0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.
1: चांद

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

गेली की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। अब देखो यार, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि इस आवाज में बात कर रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि मेरी आवाज आपको अच्छी लग पा रही है। लेकिन कोई बात नहीं है गाइज, हम जो है इस आवाज से आज मैनेज करेंगे। गुड मॉर्निंग है जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश। हाँ, आवाज से भले ही मैं आपको कमलेश लग रही होंगी, लेकिन बिलीव मी आई एम योर कशिश। और स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त 6:07 हो रहे हैं और मैं किसी के साथ नहीं, अकेली जो है आ गई हूँ आपकी बेसिक सी मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए। एंड देखिए यार, क्या है कि सुदेव जो है दो दिन से मेरे बिना जो है आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो जो है ना थोड़े से थक से गए थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आज एक काम करो कि आप रेस्ट ले लो, मैं जो है अब थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ और अब जो है मैं बात कर सकती हूँ। और मैंने पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में ये बोला, क्योंकि आवाज़ मेरी मुझे जब खुद सुनाई दे रही है तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मुझे जो है ये करना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, आज सुदेव को मिस करते हुए और बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग बातें करते हुए वीकेंड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बस आप जो है स्टे ट्यून्ड रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, स्टे ट्यून्ड रहना है और जो है अमेजिंग वाले अपने मैसेजेस जो है वो मुझे भेजने हैं। क्योंकि आज देखो ऐसी तबीयत के साथ और ऐसी आवाज़ के साथ अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप जो है अपनी प्यारी प्यारी मोटिवेशनल कोड जो है, मैसेजेस जो है, विशेस जो है वो मुझे भेज सकते हैं, ताकि जो है मेरे मॉर्निंग का मूड जो है वो सेट हो जाए। बाकी आपकी मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए अमेजिंग गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर। टोनी कक्कर दी का ये गाना, पति पत्नी और वो दो से रीमेक का रीमेक बना के उसका भी रीमेक बना दिया। इंजॉय कीजिए गाना, मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक coupon or mega draw ticket.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: अगर रिग्रेट वर्ड का कोई गाना होता ना तो यही होता। आयुष्मान खुराना और नेहा कक्कड़ की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। वेलकम बैक है जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। एंड बहुत अमेजिंग अमेजिंग गानों के बीच में आज वीकेंड की शुरुआत हम करने वाले हैं। एंड बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। साथ में आपको मैं याद दिला दूं कि टी डे जो है वो है आज, यानी चाय दिवस है, यानी हम जैसे चाय प्रेमियों का दिन है आज, उस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन आज मॉर्निंग वाला मोटिवेशन जो है किसने हमें भेजा है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एज यूजुअल रशीन जी का जो है मैसेज आया है, जिन्होंने लिखा है ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव थॉट्स एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, गुड मॉर्निंग जियोविंदास। जियोविंदास रशीन जी, थैंक यू सो मच। जुल्फी भाई ने जो है हमें एक अमेजिंग वाली फोटो भेजी है, गुड मॉर्निंग वाली, और उस पर लिखा है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड प्रोग्राम इट फॉर योर सक्सेस। ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच जुल्फी जी। शशिकांत पाटिल जी ने भी एक इमेज भेजी है जिसमें दो बहुत क्यूट बच्चे जो है आसपास बैठे हुए हैं और उस पर लिखा है गुड मॉर्निंग, और उसके नीचे उन्होंने एक प्यारा से कोट लिखा है थ्री थिंग्स दैट विल ऑलवेज ब्रिंग यू पीस, फर्स्ट इज ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट यू हैव, सेकेंड एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट यू कैन चेंज, एंड थर्ड इज होप फॉर वॉट्स येट टू कम। Dreams are renewable no matter what our age. Good morning. देखिए आज का पूरा दिन मुझे ऐसा लगता है कि gratitude वाला है, और माफी चाहूंगी अगर आपको मेरी आवाज में थोड़ी सी खराश जो है वो फील हो रही है, बिकॉज गला खराब चल रहा है, और सिर्फ मेरा नहीं चल रहा है, मैं जिस इंसान से टकरा रही हूँ ना मार्केट में या ऑफिस में उसका गला खराब, उसे भी सर्दी है। सो प्लीज़ बेयर विथ मी, अभी एक दिन का मुझे रेस्ट मिल जाएगा वीकेंड पे, उसके बाद फिर आपको मेरी नॉर्मल आवाज़ सुनने का मौका मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ मैं आप लोगों से कह दूँ कि थोड़ी सी देर में जो है हम ब्लैक बोर्ड स्टोरीज लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर आज का सवाल जो है मैं आपसे पूछूंगी। और जिस तरीके से सुदेव कहते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि आप छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और कशिश से कितने ज्यादा स्मार्ट है, सो फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आर आपके रेडियो सेट्स पर।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग,
0: वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स रॉकस्टार मूवी से एआर रहमान जी का, फिर से उड़ चला। एमटीवी अनप्लग्ड से ये गाना है, इसे एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

देखिए मेरे बिना तो आपका रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था ना, इसीलिए मैं आ गई हूँ बिना किसी देरी के। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। आपकी बेसिक सी मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। अब देखिए यार, आज का सीन ऐसा है कि आज है वर्ल्ड टी डे, यानी चाय दिवस, और हम जैसे चाय प्रेमियों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग वाला दिन। रेडियो ऑलिव भी कुछ बहुत ही स्पेशल कर रहा है हमारे चाय लवर्स के लिए। एंड पिछले कुछ दिनों से हम आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं, जिनके चलते कुछ लोग सिलेक्ट भी हुए हैं,

जिन्हें जो है आज मौका मिलेगा रेडियो ऑलिव के आरजेस के साथ चाय पे चर्चा करने का। बहुत सारे अमेजिंग गेम्स खेलने का एंड भी बहुत कुछ करने का। इसके बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं बता दूंगी। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्लैक बोर्ड स्टोरी का जो है वक्त हो गया है, जहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी आसान सा सवाल और आपको बस जवाब देके मुझे ये बताना है कि आप छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और मुझसे कितनी ज्यादा स्मार्ट है। ये तो सुदेव ने ये प्रथा चालू करी थी लेकिन मैं इसे आगे लेकर जा रही हूँ। सो बस आज का सवाल जो है वो चाय से रिलेटेड ही है, तो जरा कान और ध्यान लगाकर सुनो और मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में चाय जो है वो कहाँ पैदा होती है, कहाँ प्रोड्यूस होती है। बहुत ही आसान सा है यार ये तो, मुझे ना मतलब स्कूल से पता था और अगर आप असली चाय लवर हो तो आपको भी पता होना चाहिए। 3311063 ये है मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर, जल्दी से अपने ऑडियो नोट्स भेज दीजिए, जो है व्हाट्सएप मैसेजेस कर दीजिए और बिना देरी करे जो है एक अमेजिंग वाला गाना मैं आपको सुना देती हूँ। के की आवाज में जन्नत मूवी का ट्रैक है, इंजॉय करते रहो और आंसर भी देते रहो और मेरे साथ कहते रहो जी ओ बिंदास।

0: बस देखिए जितने प्यार से इस गाने में अरिजीत सिंह ने कहा है ना, ले आऊंगा, बस उतने ही प्यार से पापा से अगर कुछ मंगाओ तो वो कहा करते थे कि हाँ आते हुए ले आऊंगा। वेलकम है जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ओलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए जो है बिंदास मॉर्निंग शो लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक्स वाली नहीं क्या बोल रही हूँ, चाय नहीं मिली है ना सुबह से, जहाँ पर आपकी बेसिक वाली मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाऊंगी। अब देखिए यार, सुदेव की प्रथा के अनुसार ब्लैकबोर्ड स्टोरी में एक सवाल आपसे पूछा था, जिसका जवाब देगी आपको ये बताना था कि आप छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और मुझसे कितनी ज़्यादा स्मार्ट है। तो आज का सवाल बड़ा ही सिंपल सा था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो कौन सी है। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं, आइए जवाबों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो नाम मेरी मम्मी का मुझे दिख रहा है, जिन्होंने लिखा है चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, एंड उन्होंने फिर पूछा है कि सुदेव कहाँ है। सो सुदेव जो है, मैंने जैसे सुबह सुबह बताया कि सुदेव को आज मैंने बोला था कि आप आराम से आ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दो दिन आपने मेरे बिना काम किया है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रहमान जी ने जो है चाइना लिखा है आंसर। सुभाष जी ने जो है सबसे पहले मुझे चाय के कप की फोटो भेजी है जो उनके डैशबोर्ड पर रखी हुई है कार के, और गुड मॉर्निंग कहा है, एंड उसके बाद हैप्पी चाय डे भी लिखा है। सो आपको भी हैप्पी चाय डे। और फिर उन्होंने आंसर दिया है इट्स चाइना। उसके बाद नूरा जी ने जो है गलत आंसर दिया है, उन्होंने लिखा है श्रीलंका। श्रीलंका नहीं, चाय जो है वो चाइना में जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। शायद मुझे इसीलिए लगता है कि चाइना का नाम चाइना रखा गया है, नहीं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि चाय का नाम चाय इसलिए रखा गया है क्योंकि वो चाइना से आई है, बिकॉज चाय देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हम उससे ज़्यादा अच्छी प्रायोरिटी जो है वो हम किसी को दे ही नहीं सकते। खैर बहुत सारी अमेजिंग बातें चाय पे बातें हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो ये जो फेस्टिव सीजन अब चल रहा है तो आपके पास मौका है और ज़्यादा शाइन करने का, वो भी स्मार्टली मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ। एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनी वेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिज़ाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज़ है आपके पास, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइस Here in Qatar। अपने नजदीकी मलाबार गोल्डन डायमंड शोरूम में आप जाइए और आपको बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अमेजिंग वाली ज्वेलरी मिल जाएगी। और देखिए अपने लिए ले रहे हैं तो मेरे लिए भी कुछ ले लीजिएगा प्लीज। देखिए अमेजिंग वाले गाने जो है वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर और आपके रेडियो सेट्स पर,
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the Hour. Yeah, guys.

0: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
0: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
0: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
0: दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 इज नाउ लाइव एट DECC फ्रॉम 14th टू 23rd मे. दिस ईयर फीचर्स ओवर 520 पब्लिशर्स फ्रॉम 37 कंट्रीज, मोर देन 1.8 मिलियन बुक्स, एक्साइटिंग न्यू रिलीजेस, कल्चरल टॉक्स, वर्कशॉप्स एंड फन एक्टिविटीज फॉर किड्स एंड फैमिलीज. यू कैन ऑल्सो एंजॉय ऑथर मीट एंड ग्रीट्स, इंटरक्टिव सेशंस एंड द ब्रांड न्यू मोबाइल लाइब्रेरी एक्सपीरियंस फ्रॉम 9 AM टिल 10 PM एंड फ्राइडेज from 3 PM till 10 PM. And the best part, entry is absolutely free. Don't miss one of Qatar's biggest celebrations of books, learning and culture. Only at Doha International Book Fair 2026.

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

बस यही तो कह रही हूँ मैं आप लोगों से। क्या आपके बिना और चाय के बिना जिया नहीं जा सकता। सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज में वजीर मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलएफ पर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी कशिश और आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूं। एंड कल जिस हिसाब से शाम को हवाएं चल रही थी और ठंडा ठंडा सा जो है मौसम हो गया था, मुझे सच में लगा था कि आज का टेम्परेचर एकदम गिरा हुआ होगा और चाय पीने में और ज्यादा मजा आएगा, लेकिन नहीं, मौसम को कुछ और ही मंजूर है। इस वक्त के टेम्परेचर की अगर बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड लोएस्ट टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और अगर हवा के बहाव की बात की जाए यानी हवा किस हिसाब से बह रही है, सो आज 12 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जो हवाएं हैं वो बह रही हैं। अब सुदेव तो है नहीं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये हवा उन्हें उड़ा के लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी, ये तो नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है मुझे कि इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में 7:08 हो रहे हैं। एंड अगला गाना जो है जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ, ये मैंने अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट से जो है निकाल के आपके लिए आज प्ले किया, क्योंकि वीकेंड है और हम अच्छे गाने ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। बस इसीलिए मेरा फेवरेट गाना जो है वो इंजॉय कीजिए। AR रहमान जी का ये गाना है, मूवी का नाम गुरु है। बाकी आप सबको तो इस गाने के बारे में मैं क्या ही बताऊं। ये गाना एंजॉय करके आइए और अपने साथ देखिए फोटो जरूर लाइएगा, अमेजिंग वाली फोटोज जो है आसपास की खींच के मुझे भेज दीजिए 3311063 पे। चाय के कप की फोटो भेज देंगे तो भी बढ़िया लगेगा। मैं हूँ आपकी कशिश, जियो बिंदास।

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: कांट बिलीव दिस, 2016 में ये मूवी आई थी, 10 साल हो गए. मतलब जब ये मूवी आई थी ना, इस गाने पर मैं अपने समर कैंप में डांस सीखा करती थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है रेडियो पे बैठकर सबको ये गाना सुना रही हूँ. ये मैनिफेस्टेशन वर्क करता है. जैसे अभी मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ी देर में मुझे चाय पीने मिलेगी, तो लेट्स होप मुझे चाय पीने मिल जाए. वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश और आपकी बेसिक वाली मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए यहाँ पर आ चुकी हूँ. और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये बोला था कि यार मैंने ये स्टूडियो में बैठे बैठे जो है काफ़ी अकेला फील करती हूँ. आज तो सुदेव भी नहीं है. आप लोगों का जो है ये कर्तव्य बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे ज़रा बाहर क्या कुछ चल रहा है ये बताएं. फोटो वोटो भेजो यार, कहाँ पर बैठे हो, क्या कर रहे हो एंड मौसम कैसा हो रहा है इस वक्त. वैसे कुछ लोगों ने मेरी बात एक बार में सुन ली और मुझे जो है अमेजिंग वाली फोटोज भेज दी है. सुषमा जी ने जो है अपने गार्डन से अपने फूलों की फोटो भेजी है. वाइट कलर के फ्लावर्स जो है अमेजिंग वाले दिख रहे हैं. एंड मुझे सच में बताऊँ सुषमा जी, मम्मी याद आ गई मेरी, क्योंकि मेरी मम्मी भी ना गार्डनिंग का बहुत शौक रखती हैं. सो उन्होंने बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स जो हैं वो लगा के रखे हैं. और अगर मैं बात करूँ सुभाष जी की, तो सुभाष जी ने भी आज मुझे अपने डैशबोर्ड से अपनी चाय के कप की फोटो भेजी थी और हैप्पी टी डे, हैप्पी चाय डे जो है वो लिखा था. थैंक यू सो मच. बस आप ही के उस चाय की कप को देख के मुझे चाय की याद आ गई. बाकी मेरे पापा ने मुझे पर्सनली जो है अपनी ऑफिस की हरियाली की फोटो भेजी है. सो पापा आप जो है भेज सकते हैं, हमारा नंबर 3311063 है. इस पर जो है आप सब सिर्फ मेरे पापा ही नहीं, आप सब जो है जो भी अभी देख रहे हैं, अगर आप गाड़ी आपकी रुकी हुई है सो एक फोटो अमेजिंग सा खींच के मुझे भेज सकते हैं. कोई अमेजिंग मैसेज है आपका सो वो भी आप मुझे जो है भेज सकते हैं. यार थोड़ा ऐसे प्यार व्यार दे दूँ मुझे अच्छा लग जाएगा, थोड़ा जुकाम हो रखा है मुझे. फिलहाल एक गाना जो मैंने फिर से अपनी प्ले लिस्ट से निकाल के एकदम छाट कर आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ जबरदस्त हिट में.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.
0: बद्दूर मूवी से अली जफर की आवाज में ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. ये मूवी तब आई थी जब मैं बहुत छोटी थी एंड मैनिफेस्ट मैं ये भी करती थी कि कोई अगर मुझसे पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा.
2: देखा तुझे तो तसल्ली हुई,
0: एंजॉय करो और कहते रहो.

ये चीनी कम हो या कुछ और कम हो या बस मन ना हो, इलाज है मेरी जान गरम गरम अदरक वाली इलायची वाली मसाले वाली चाय। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश और आपकी बेसिक वाली मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए आ चुकी हूँ। और जैसे कि आज मेरा फेवरेट डे है, यानी टी डे, चाय दिवस है, आज इंटरनेशनल टी डे है जो हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो अब देखो, मैंने सोचा कि क्यों ना जो हम ये फिट है तो हिट है, जो हमारा हेल्थ वाला सेगमेंट है, इसमें बात करें चाय की और चाय के बेनिफिट्स की। अब काफ़ी सारे लोग जो है बचपन में मुझे चाय पीने से रोकने के लिए काफ़ी सारी बातें जो है वो कहा करते थे कि चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, आवाज़ ख़राब हो जाती है, चाय पीने से जो है पिगमेंटेशन स्किन में बढ़ जाता है, चाय पीने से जो है ना तुम बूढ़ी जल्दी हो जाओगी, ऐसी सारी बातें मेरे घर वाले किया करते थे। लेकिन चाय के जो फ़ायदे हैं वो धीरे धीरे करके मुझे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे समझ आने लग गए। अब क्या होता है ना कि मैं भोपाल से हूँ एंड भोपाल के लोग जो है वो सच में बहुत ज़्यादा बड़े वाले चाय पगलूज होते हैं, यानी उन्हें चाय बहुत ज़्यादा पसंद होती है। एंड मुझे भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड कोई भी बीमारी हो, कुछ भी लग रहा हो, हम चाय को ऑप्ट करते हैं। सो चाय के साइंटिफिकली अगर मैं बताऊँ तो क्या क्या फ़ायदे हैं। डाइजेशन अगर आपका ख़राब रहता है तो जिंजर और कार्डमम वाली यानी इलायची वाली जो चाय है ये ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम जो है वो दूर करती है। इम्यूनिटी जो है वो भी चाय से बढ़ती है। हाँ जी, लौंग वाली चाय, ब्लैक पेपर वाली चाय पीने से कोल्ड और फ्लू जो है वो ठीक होता है। आज मैं यही वाली चाय पीने वाली हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हार्ट हेल्थ की तो सिनेमन यानी दालचीनी जो है वो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को जो है कंट्रोल करती है। और ब्लैक टी में ना एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बिना आपको जो है किसी जिटरनेस के, यानी बिना किसी बहुत एंशियस वाली फीलिंग के जो है एक फोकस देता है और आपकी बॉडी को जो है रिजुविनेट करता है। और अगर मैं बात करूँ अगर आपको बॉडी पेन रहता है अक्सर तो भी चाय इसमें बहुत मदद कर सकती है। एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं चाय में जो इन्फ्लेमेशन को या और थकान को जो है वो दूर करते हैं। तो देखो यार, इन शॉर्ट चाय मन को तो सुकून देती है लेकिन साथ में तन को भी काफ़ी सुकून देती है। तो बस चाय पीते जाओ और मुझे याद करते जाओ। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने कहा कि यार अपने चाय के कप की फ़ोटो भेजो तो बहुत सारे लोगों ने भेज दी। रसेल इस्लाम जी ने जो है मुझे भेजी है एक चाय की फ़ोटो, अपने शायद ऑफिस की डेस्क में जो है बैठ कर चाय पी रहे, उन्होंने हैप्पी टी डे लिखा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड निसार खान जी ने जो है गुड मॉर्निंग कहा है। एंड अगर मैं बात करूं मोहम्मद इमरान जी ने जो है एक फ़ोटो भेजी है जिस पर एक बड़ा ही प्यारा सा शेर लिखा है, कोट लिखा है, पता नहीं आप डिसाइड कीजिए। कभी तो सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा हो, कभी तो सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा हो, खुले जवां आंख मेरे सामने चेहरा तुम्हारा हो। वाह जी वाह सर, ये किसके लिए लिखा है, किसको डेडिकेट करना चाहते हैं आप, ये प्लीज़ मुझे बता दीजिए। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना नीरज श्रीधर की आवाज़ में आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, मूवीग्राम किस्मत कनेक्शन। तो एंजॉय करो ये गाना और मेरे साथ मिलकर कहते रहो जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर. कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन. या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
4: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: इस गाने जैसी हालत हो गई है मेरी,
1: कुछ याद ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हुई हुई मैं मस्त सिर्फ चाय पी के।
0: वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए जो है बिंदास मॉर्निंग शो ले आई हूँ आपके लिए। एंड आज जो है इंटरनेशनल टी डे है, सो मैंने आप लोगों से कहा था कि अपनी अपनी चाय के कप की फोटो जरा मुझे भेज दीजिए, एंड बहुत सारे लोग भेज रहे हैं। सर ने जो है आई थिंक कल रात की, कल शाम की फोटो भेजी है, ये लुसेल से इन्होंने एक बहुत ही प्यारी वाली फोटो भेजी है। और हरपाल संधु फ्रॉम दुकान जो है उन्होंने मुझे जो है गुड मॉर्निंग जी कहा है। गुड मॉर्निंग जी, केड़ो हाल, कैसे हैं आप, बढ़िया है या नहीं है बताइएगा ज़रूर मुझे। और आप लोग भी मुझे ऐसे ही मैसेज कर सकते हैं एंड अपने वीकेंड का प्लान जो है वो भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं कुछ सजेशन जो है वो खुद के लिए भी ले लूँ एंड बाकी लोगों को भी दे दूँ। वैसे अगर मैं बात करूँ तो 4GCC गेम्स जो है वो चल रहा है, वो देखने के लिए आप जा सकते हैं। तोरबा मार्केट जो है वो चल रहा है एंड काफ़ी लोगों ने मुझे आकर बताया है कि यार ये बहुत ही अमेजिंग मार्केट है, सो वहां जा सकते हैं। पिछले हफ्ते मैं कटारा में जो है एक मार्केट लगा है वहां पर गई हुई थी एंड शायद अब वो खत्म हो गया है, तो वहां के लोग भी जो है अब तोरबा की तरफ आ जाएंगे। तो बहुत सारा अमेजिंग सामान आपको वहां पर मिलने वाला है। गए हो या नहीं गए हो, गए हो तो कैसा है प्लीज मुझे जरूर से बताइएगा। अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन गानों को एंजॉय करते रहिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव, राजपाल यादव, और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
0: देखिए अब तो इन्होंने भी कह दिया आप इस वाइब को एंजॉय कीजिए और गाना इस वाइब एंजॉय कीजिए। Yes guys, this makes sense.

0: रेडियो ऑन योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: आज तो देखिए गजब का दिन है, लेकिन गजब का दिन कल भी था। किसके लिए पूछ रहे हैं आप? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले गजब का दिन गाना जो है आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। एंड मुझे ना ऐसा लग रहा है, ये जो T20 लीग चल रहा है, इसमें कोलकाता ना सिर्फ इसलिए खेल रही है कि मैं किसी को जीतने नहीं दूंगी। मतलब कोलकाता की टीम जो है, जब भी कोई टीम ऐसा होता है कि यार अब हम कोलकाता को हरा के बस पॉइंट्स टेबल में आगे चले जाएंगे, कोलकाता उस टीम को हरा देती है। सो कल था मैच कोलकाता और मुंबई के बीच में, जिसमें कोलकाता ने जो है वो मुंबई को हरा दिया। जी सो कोलकाता के जो है होम ग्राउंड पर ये मैच खेला जा रहा था, एंड ईडन गार्डन में जो है ये मैच हुआ। एंड उसमें जो है बैटिंग सबसे पहले तो कोलैप्स कर दी कोलकाता ने मुंबई की, एंड उसके बाद जो गेम दिखाया है, ओए होए होए होए, मज़ा ही आ गया। लेकिन अब पॉइंट्स टेबल में क्या होगा एंड आज किसका मैच है, ये सब मैं आपको बताऊँगी थोड़ी सी देर में। आप जो है बस मेरे साथ बने रहिए और एक अमेजिंग वाला गाना जो है इन्जॉय करते रहिए।
1: Cool song. Radio Olive Par. Aane wala gaana. Cool song of the hour.
2: Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai? Cool song.
0: Roop tera mastana ka DJ mix. Aur aapke radio sets par. Enjoy kijiye aur kehte rahiye jeevan.

ऐसे ही चिल्लाता है मेरा भाई अगर मैंने उसकी कोई चीज ले ली होती है तो। 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश और आपकी मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए यहाँ पे आ चुकी हूँ। एंड देखिए बात हम करने वाले हैं आज के मैच की। सो T20 लीग में आज जो है बड़ा ही हाईएस्ट स्टेक मैच जो है वो रहने वाला है गुजरात और चेन्नई के बीच में। अब देखिए पिछला जो चेन्नई का मैच था उसके में तो सब ऐसे टकटकी लगा के एकदम आंखें लगा के जो है वो देख रहे थे क्योंकि चेन्नई में हो रहा था मैच और उस स्टेडियम में जो है माही भाई ने कहा था कि यार मेरा अगर आखिरी मैच होगा ना तो इसी स्टेडियम में होगा और वो आए भी दिखे भी। अब लोग ये कह रहे थे कि यार माही भाई खेलेंगे नहीं खेलेंगे और इन सब के बीच में मैच जो है वो हार गए। लेकिन आज का जो मैच है वो हाई स्टेक इसीलिए क्यों या तो टीम जो है वो बाहर हो सकती है और नहीं तो गुजरात जो है वो टॉप टू में जो है अपनी जगह बना सकती है। अब इस पिच की अगर मैं बात करूं जहां पर आज ये मैच खेला जाना है सो इस पिच को जो है ये कहा जाता है कि जो पहले बॉलिंग करता है उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अब ये देखते हैं कि टॉस जो है वो कौन जीतने वाला है और आखिर में जीत किसकी होगी। खैर अगर मैं बात करूं इस वक्त पॉइंट टेबल की तो बैंगलोर इस वक्त सबसे ऊपर है, गुजरात सेकेंड पोजिशन पर चल रहा है, यानी आज के मैच जीतने से उन्हें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोजीशन पे। लेकिन थर्ड पोजीशन पे हैदराबाद है, फिर राजस्थान है, फिर पंजाब है, फिर कोलकाता है और फिर सेवेंथ पोजीशन पे चेन्नई है। चेन्नई सेवेंथ पोजीशन थाला फॉर अ रीजन। सो बस यही है कुछ पॉइंट्स टेबल का हाल। बाकी मेरा हाल जो है वो मुझे थोड़ा सा बेहाल सा लग रहा है बिकॉज सर्दी जो है वो धीरे धीरे करके मेरे अंदर घर करती जा रही है। एंड ये बात मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूसुफ खान जी को जो है समझ आ गई। उन्होंने सबसे पहले हमें गुड मॉर्निंग कहा, फिर मुझे पूछा कि सुदेव कहाँ है, एंड उसके बाद फिर उनका एक मैसेज आया है, कशिश आपकी आवाज़ में जो है आपकी आवाज़ जुकाम वाली लग रही है, मौसम का असर हो गया है, टेक केयर एंड रेस्ट मोहम्मद यूसुफ खान। अब देखिए मतलब आप मेरे को समझ गए हैं कितनी बढ़िया वाली बात है। सुदेव जो है वो थोड़ी ही देर में आएंगे, अब देखते हैं कि वो आप लोगों से बात करने पहुंच पाते हैं वक्त पे या नहीं पहुंच पाते हैं, देखने वाली बात होगी। खैर खुद को एक गाना डेडिकेट करती हूँ मैं आज आप सबके साथ, तो बस मेरे साथ इस गाने को इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास। स्ट्रेस नहीं लेना है मेरी जान, वीकेंड आ चुका है, जो भी होगा सब

0: Ramanguna.
1: Radio Olive.
2: 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.
3: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
5: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million riyals cash prizes.
6: Jeetne ke 4 raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 riyals growth par paiye ek coupon.
7: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
6: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, normal महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
8: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज हेवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ विजिट कारमिल ग्रुप नाउ
9: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
10: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में बिंदास मॉर्निंग
11: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
9: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: जो कोई नहीं समझ पाता ना, वो स्वानंद किरकिरे समझ भी जाते हैं और इतनी खूबसूरती से लिख भी देते हैं कि ना मतलब तारीफ करना भी जो है कम पड़ने लग जाता है। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश और आपकी बेसिक वाली मॉर्निंग्स को बिंदास बनाने के लिए यहाँ पर बिंदास मॉर्निंग शो लेकर आ गई हूँ। एंड मतलब मुझे ऐसा लगा था मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, सबको समझ आ पा रहा है। सो मैं मैसेज पढ़ना चाहूँगी। एक मोहम्मद सामी जी ने जो है मुझे एक सामी जी ने मैसेज किया है। सबसे पहले तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है, सो वालेकुम अस्सलाम सामी जी। एंड फिर उन्होंने कहा है कि कशिश आप जो है थोड़ी सी ऐसी तबीयत ख़राब सी लग रही है आपकी और आज जो है लेट हो गए हैं मैसेज करने में। फिर पूछा कि सुदेव कहाँ है, तो सुदेव जो है वो थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। एंड फिर इन्होंने बाहर का एक बहुत ही अच्छा सा फ़ोटो भेजा है। थैंक यू सो मच सामी जी, बस इसी प्यार के लिए तो सुबह सुबह भले ही तबीयत ख़राब हो उठकर जो है हम आ जाते हैं क्योंकि आप लोगों से बातचीत करनी होती है। फिलहाल वीकेंड की वाइब फुल ऑन है, एक अमेजिंग वाली अपडेट जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ लेकिन थोड़ी सी देर में। उससे पहले एक फ्रेश सॉन्ग आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इन्जॉय कीजिए।
1: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.
0: और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास। दिलजीत दोसांझ की आवाज में ये गाना है, मैं वापस आऊंगा मूवी से। अगर ट्रेलर नहीं देखा है तो अभी जाके फटाक से देख लो पहली फुर्सत में। मैं हूँ आपकी कशिश जियो बिंदास।

0: ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड एंड मॉल ऑफ कतर और पाइए स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
2: द बिग biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

अब लड़के जो है वो बैठ के गेम खेल रहे हैं और लड़कियां उनके मैसेज का, उनके रिप्लाई का इंतजार कर रही हैं। अब मेरे दोस्त, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर कैसे गर्ल बनेगी? वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। एंड बहुत सारी अमेजिंग बातों के बीच में एक अपडेट जो है मैंने सोचा कि मैं आपको दे दूँ, क्योंकि जो इतने भी मेरे ई गेमिंग फैंस हैं, यानी मतलब जो लोग गेम्स खेलना पसंद करते हैं या ई स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए एक खबर मैं लेकर आई हूँ। अब देखिए यार, कतर म्यूजियम मीडिया सिटी और कतर SNRG ने मिलकर जो है 3-2-1 ई स्पोर्ट्स लाउंज जो है उसका इनॉग्रेशन किया है, जो कि 3-2-1 कतर ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम के अंदर बना है। इस लॉन्च के साथ QOSM दुनिया का पहला ऐसा ओलंपिक म्यूजियम बन गया है जहां पर एक परमानेंट और सबके लिए एसेसिबल स्पोर्ट्स हब जो है वो खुला है। ये लाउंज जो है ये जितने भी हमारे कैजुअल गेमर्स हैं उनसे लेकर प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स एथलीट्स तक सभी के लिए एक बढ़िया जो है प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया। और ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि इसमें जो है इसे एम करके बनाया गया है कि जितना भी कतरी लोकल टैलेंट है वो प्रमोट हो और कतर के ग्लोबल गेमिंग सेक्टर में जो है एक बड़ा नाम बन के सामने आए। सो देखिए, जितने भी मेरे ई स्पोर्ट्स के फैन हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो कतर में आ चुकी है। सो यार, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपको क्या लगता है, ये मुझे ज़रूर से बताइएगा। एंड आज जो है इंटरनेशनल टी डे है, यानी चाय दिवस जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे हम लेकिन थोड़ी सी देर में। फिलहाल जैसे मुझे चाय पर प्यार आता है वैसे ही अगला गाना भी आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। गाने का नाम है तुम पे ही प्यार आ गया, सोनू निगम की आवाज में, गिन्नी विद सनी 2 का ये गाना है। इसे एंजॉय करके जरा जल्दी से आइए, फिर चाय पे चर्चा करते हैं। मैं हूँ आपकी कशिश, यू बिंदास।

0: शॉर्ट ब्रेक। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूं जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।

0: देखिए शर्मा की नहीं झुकी है नजर, नजर झुकी है ये देखने के लिए कि वक्त कितना हो गया है, टाइम क्या हो गया है, और क्या ये टाइम है चाय पीने का। बिल्कुल जी, वक्त हो गया है चाय पीने का। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो आलम पर, मैं हूँ आपकी कशिश। स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त 9:19 हो रहा है, यानी 9:19 हो रहे हैं, एंड आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी चाय दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे जैसे सभी चाय पगलूस के साथ, चाय लवर्स के साथ। एंड जैसे मैं अक्सर कहती हूँ ना कि मेरा जो है खून टी पॉजिटिव है, तो बिल्कुल उस टी पॉजिटिविटी के नाम पे जो है काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए हैं। यार मतलब मैंने सच में नहीं सोचा था कि मेरे जैसे ही लोग काफ़ी सारे हैं जो टी यानी चाय के पीछे पागल हैं। सो मुझे जो है शेख अतीक जी ने जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चाय की फ़ोटो भेजी और उन्होंने लिखा है, सो अर्ज किया है, गर्मा गर्म चाय पीने में ही है भलाई, गर्मा गर्म चाय पीने में ही है भलाई, वरना आ जाएगी उस पर मलाई। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है यार, मतलब बिल्कुल मेरे ह्यूमर को मैच करता हुआ जो आपने शेर लिखा है, मुझे बहुत मजा आ गया। मोहम्मद इमरान जी ने भी कशिश जी कहते हुए एक इमेज भेजी है और उस पे लिखा है, तुम्हारी हर याद में हम काफी अच्छा कॉफी अच्छा तुम्हारी हर याद में हम कॉफी की तरह पी लेते हैं, बस जरा सा मुस्कुरा दो जिंदगी फिर जी लेते हैं। सर टी डे के दिन जो आपने कॉफी वाली बात की है, कैंसिल होना जो है आप चाहते हैं मुझे ऐसा लगता है। मोहम्मद यूनुस जी जो है उन्होंने भी मुझे मैसेज किया है, कशिश सुबह हो गई एक चाय, अब 10 बजे के बाद होगी। देखिए बात तो सही है, क्या है अगर चाय जो है वो सुबह की शुरुआत में पी ली जाए तो फिर अभी तक तो दूसरी चाय का वक्त हो जाता है यार। खैर मेरी तो तीसरी चौथी का भी वक्त हो जाता है, पर अभी वक्त हो रहा है जबरदस्त हिट वाला गाना सुनने का। और अब देखिए चाय दिवस जब हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं तो बस आपसे एक ही इल्तिजा है, आपसे एक ही बात मैं कहना चाहूँगी कि क्यों ना, मतलब मज़ा आ जाएगा अगर आप लोग चाय से अपना प्यार जो है वो मेरे साथ शेयर करें। यानी चाय से कितना प्यार करते हैं आप, कौन है वो इंसान जिसके साथ आप चाय पे जाना प्रेफर करते हैं, या चाय जो है पीना आपको बहुत पसंद है, किस तरीके की चाय पीना चाहते हैं, सब बता सकते हैं। आज पूरी बातें जो है वो चायमय होंगी, यानी मई में चाय की बातें होंगी। फिलहाल जबरदस्त हिट गाना जो है आपके रेडियो सेट्स पर,
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
0: भोपाल के चाय पीने वाले दिनों के नाम पे उन्हें याद करते हुए ये गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। एंड हम सबकी लाइफ में एक वो चाय फ्रेंड होता है ना जिसे आज हम याद करेंगे, तो बस छिछोरे मूवी का ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, उन्हीं दोस्तों के नाम उसी चाय के नाम। एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

देखिए अजनबी भी अपने बन जाते हैं जब बात जो है वो चाय की आ जाती है। वेलकम जी 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ यार। और देखिए बस आज चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे पर मैंने बस आपसे इतना सा कहा था कि यार मुझे इतना बताओ कि किसके साथ आप चाय पीने के लिए जाते हो और चाय से आपका नाता कैसा है। सो जैसे ही मैंने पूछा कि किसके साथ चाय पीने जाना चाहते हैं, नासिम जी ने कह दिया आपके साथ। देखिए अगर आपने कॉफ़ी वॉफी जूस वूस कहा होता तो मैं एक बार को मना कर देती, लेकिन चाय को मना कौन करता है। बिल्कुल, तो बहुत सारे लोगों को जो है आज मौका मिलने वाला है आरजेस के साथ, रेडियो ऑलिव के आरजेस के साथ एक चाय डेट पर जाने का या एक चाय के साथ जो है चर्चा करने का, फन करने का। सो सारी अपडेट्स के लिए जो है स्टे ट्यून रहिए। और मोहम्मद मुशीर आलम जी ने जो है मुझे फोटो भेजी है अपने गाड़ी की जहां पर वे अपना सेकंड जो है कप पी रहे हैं चाय का। इन्होंने सुबह भी हमें एक फोटो भेजी थी एंड अभी तक सर आप कार में ही है। कितना दूर है आपका ऑफिस। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ जी ने जो है कहा है कि कशिश आपने मेरा नाम फिर से यूनुस कहा है, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। क्या है ना कि मुझे सुबह से चाय नहीं मिली है और मुझे चाय नहीं मिलती तो मैं जो है थोड़ा सा ऐसे बिहेव करने लग जाती हूँ। खैर अमेजिंग वाले बहुत सारे मैसेजेस जो है वो मेरे पास आ रहे हैं, सो उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी देर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जो है शायरी फिर से आई है मेरे पास, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी जब आप सब के सब मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल मैसेज करोगे। 3311063 हमारा नंबर है। चाय के साथ अपना प्यार जो है एक्सप्रेस कीजिए और अमेजिंग वाले गाने जो है वो यहाँ पे इंजॉय करते रहिए। गाने का नाम है आ जाओ मेरी तमन्ना, और मेरी तमन्ना तो बस एक चाय पीने की है। तो मैं जाती हूँ चाय पी के आती हूँ। आप ये गाना अजब प्रेम की गजब कहानी से इंजॉय कीजिए।

भाई मुझे लग रहा था कि मैं तो चाय पगलू प्रो मैक्स हूँ, मुझसे ज्यादा ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन आज सबने मुझे गलत साबित कर दिया है। वेलकम जी 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आपकी बेसिक मॉर्निंग्स को बिंदास मॉर्निंग बनाने का जो बीड़ा है वो मैंने अपने कंधों पे, नाजुक नाजुक कंधों पे उठा के रखा था। एंड बहुत सारी अमेजिंग वाली बातें आज हमने की। एंड इंटरनेशनल टी डे है आज, यानी चाय दिवस हम कह रहे हैं इसको। एंड इसी के चलते मैंने आपसे पूछा था कि चाय से आपका रिश्ता कैसा है, ये प्लीज हमें बताइए। एंड अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय के कप की फोटो खींच के मुझे भेजिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने चाय के कप की फोटो भेजी है, लेकिन शेख अतीक जी आज एकदम शायराना मोड में है और इन्होंने एक तुकबंदी करते हुए मुझे भेजा है कि चाय में जान है। वाह वाह, कि चाय में जान है और जान है तो जहान है। वाह वाह वाह, कितनी सिंपल सी बात है लेकिन कितना डीप इन्होंने कह दिया है। बहुत ही मजा आया मुझे ये सुन के, बिल्कुल उतना ही मजा आया जितना चाय पी के आ जाता है। सो देखिए, आज बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें मौका मिलने वाला है रेडियो ऑलिव के आरजेस के साथ जो है चाय पे जाने का और अमेजिंग टाइम स्पेंड करने का। सो इसकी सारी अपडेट्स जो है आपको रेडियो ऑलिव के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर जो है मिल जाएंगी। सो आप जाकर जो है वहां पर देख सकते हैं एंड फॉलो कर लीजिएगा। यार सिर्फ देख के थोड़ी ना कुछ होगा, बहुत अमेजिंग कंटेंट हम डालते रहते हैं। सो जाइए फॉलो कीजिए, मैं भी वहां पर मिल जाऊंगी, मुझे भी फॉलो कीजिए, अमेजिंग वाली बातचीत जो है जारी रखेंगे। लेकिन अब वीकेंड के उस पार फिलहाल मुस्कान आ रही है आपके चेहरे पे, एक बड़ी सी मुस्कान जो है वो आपको देने के लिए। सो मुस्कान को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मुझे ना दुआओं में ज़रा याद रखिएगा, बिल्कुल। और चाय जब भी पिए तो एक बार सिप लेते हुए कशिश कशिश कशिश ऐसा बोल दीजिएगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। क्या है मेरी आज बहकी बहकी बातों पर आप बिल्कुल भी जो है गौर मत कीजिए, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत खराब है और दूसरा वीकेंड है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ये तो आप लोगों का प्यार है जो मुझे यहां तक लेकर आए हैं, वरना चाय छोड़कर मैं सुबह सुबह उठ के ऑफिस आऊं। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खाना खाते रहिए, पानी और चाय पीते रहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, वीकेंड को एकदम टू द फुलेस्ट इंजॉय कीजिएगा और अमेजिंग वाले गाने आपको रेडियो ऑलिव पर मिलते रहेंगे, तो इन्हें भी इंजॉय करिएगा। और फिलहाल जब तलक गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, कॉकटेल टू मूवी से, तो इसे एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास। टाटा बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. और आज वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार हम पूरे हफ्ते करते हैं, यानी कि वीकेंड इज हेयर. यस, और बेसिकली एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि यार आप एक बात बताओ, आप फिजिकली ज़्यादा टायर्ड होते हो या मेंटली? मतलब मॉडर्न लाइफ में काम कम होता है और थिंकिंग ज़्यादा होती है. फ्यूचर की टेंशन, बिल्स, करियर, रिलेशनशिप्स, नोटिफिकेशंस, एवरीथिंग इज देयर, पर हम यू नो एक्टिवली अपने बॉडी से कोई काम नहीं लेते हैं. सो दैट उससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होती हैं. अब ब्रेन लिटरली कभी स्विच ऑफ तो होता नहीं है. और मैं तो आजकल सोते टाइम पे भी इतनी सारी चीज़ें सोचने लगी हूँ ना, जब मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि दिमाग तो पूरा टाइम चल ही रहा था. और इसीलिए कभी हम पूरा दिन एसी में बैठे होते हैं लेकिन फिर भी एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं. ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है ये. और आज का शो एग्जैक्टली इसीलिए है, थोड़ा माइंड को ब्रेक देने के लिए, थोड़ा इंटेलिजेंट बातें करने के लिए और थोड़ा लाइफ को हल्का फील कराने के लिए. सो फटाफट से तैयार हो जाइए क्योंकि आज वीकेंड भी है, तो आई एम श्योर आपकी भी एनर्जी मेरी तरह एकदम पीक पर होगी. सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. बात करेंगे कि कतर में क्या ऑप्शन है और इस वीकेंड क्या क्या होने वाला है. लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: 2021 कतर ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम के अंदर ऑफिशियली स्पोर्ट्स लाउंज जो है वो लॉन्च हो रहा है. सो गेमिंग ना ऑफिशियली म्यूजियम लेवल तक पहुंच गई है भाई. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सोचो ऐसा माहौल, अगर आप 3-2-1 नहीं गए देन फर्स्ट यू शुड विजिट. एक्चुअली वहां पे पूरा जो माहौल है ना वो बहुत ही अच्छा है. मतलब हर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको चीजें वहां पे दिख जाती हैं और वहां पे फिर आप भी यू नो स्पोर्ट्स में जो माहौल होता है वो बन जाता है. तो आपको जब वो लाउंज लॉन्च होगा तो और मजा आएगा. सो बात बताती हूँ आपको, ये वर्ल्ड का पहला ओलंपिक म्यूजियम है जहां पर डायरेक्टेड डेडिकेटेड स्पोर्ट्स जो स्पेस है वो बनाया गया है. मतलब गेमिंग अब सिर्फ बच्चे टाइम वेस्ट करने वाला नहीं होगा, कॉन्वर्सेशन अब होगा कि सीरियस इंडस्ट्री बन चुकी है. और ऑनेस्टली मैं अगर ये बात करूँ तो ग्लोबल यू नो मार्केट का जो साइज है गेमिंग का, दिस इज लाइक शॉकिंग. मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स मार्केट रेपिटेडली बिलियंस में ग्रो कर रही है और कतर क्लियरली फ्यूचर में डिजिटल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है. सो हाई एंड गेमिंग पीसीज, PS5 और बहुत सारे गेम्स हैं, स्ट्रीमिंग स्टेशंस हैं, टूर्नामेंट्स होंगे, वर्कशॉप्स होगा, सब कुछ होगा. और बेस्ट पार्ट क्या है, एक्सेसिबिलिटी, फर्स्ट मॉडल, मतलब बिगनर्स भी आ सकते हैं यहाँ पर. एंड गेमिंग इंडस्ट्री अब सिर्फ प्लेयर्स तक लिमिटेड नहीं है, कंटेंट क्रिएटर, स्ट्रीमर्स, डिजाइनर्स, इवेंट होस्ट और ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए है. सो ये सब करियर्स ना अब मतलब करियर बन चुके हैं. एक्चुअली पहले ये सब करियर में नहीं आते थे, नाउ दे ऑल आर इन काइंड ऑफ करियर. सो बच्चों के पास इतने ऑप्शंस हैं आज के टाइम पे जो हमें और आपको कभी नहीं मिले. सो यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

सो भाई ईद का मतलब ये तो नहीं होता कि बस आप शॉपिंग करो और सिर्फ खाने पर ध्यान दो. कतर में ईद सेलिब्रेशन के अराउंड काफ़ी ब्यूटीफुल कल्चर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं. और ऑनेस्टली इवेंट्स का जो बेस्ट पार्ट है वो है कल्चरल. ठीक है, मतलब हर चीज़ में आपको कल्चर दिखेगा, फूड दिखेगा, अरबिक कैलीग्राफी है यहाँ पर विजिटर्स के लिए, पोइट्री सेशंस हैं, हीना आर्ट है, स्टोरी टेलिंग, ट्रेडिशनल गेम्स, पोइट्री वर्कशॉप्स. और बच्चों के लिए स्पेशली एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मॉडर्न किड्स स्क्रीन्स ना ज़्यादा देखते हैं, इसीलिए उनके लिए ज़्यादा चीज़ें हैं जैसे कि फाल्कन फोटोग्राफी और अरबिक हॉस्पिटैलिटी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. और मिडल ईस्टर्न कल्चर में हॉस्पिटैलिटी आइडेंटिटी का मेजर पार्ट होता है. सो कॉफ़ी सर्व करना भी रिस्पेक्ट और वार्म्थ का सिंबल हो जाता है यहाँ पे. तो ये सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग होने वाला है, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. पर अभी थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं पहले किताबों के बारे में. आप मुझे बताओ कि भाई आपका वीकेंड का क्या प्लान है. 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Geo.

0: सो एक ऐसी किताब जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड नॉवल है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. किताब का नाम है द रिमेन ऑफ द डे.
1: ओके, बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: सो इस किताब में जिसकी मैं बात कर रही हूँ द रिमेन्स ऑफ द डे, एक वो किताब है जो स्लोली इमोशनल इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करती है. स्टोरी एक इंग्लिश मैन की है और ये फॉलो करता है अलग अलग चीज़ें. जो पूरी लाइफ ड्यूटी और प्रोफेशनलिज्म में था, बिजी था और एक इमोशंस जो थे वो एक्सप्रेस करना भूल जाता था. मतलब उसे लगता था कि काम ही सब कुछ है और फिर बाद में आया रिग्रेट. मतलब इस किताब का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो रिग्रेट ही है. जो साइलेंट रिग्रेट जो लाइफ के एंड में फील होता है, काश थोड़ा और जी लिया होता, काश थोड़े दोस्त बना लिए होते, काश ये सब ट्राई किया होता जो लोग ट्राई कर रहे हैं, अच्छा खाना, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल. सो एडल्टहुड में ये सब फीलिंग्स रिलेटेबल होती है. मतलब मैं आज यही सोच रही थी कि एडल्टहुड में वी कैन अफोर्ड सम गुड यू नो केक्स एंड पेस्ट्रीज, पर हम वो कैलोरीज अफोर्ड नहीं कर पाते जो हम बचपन में कर पाते थे. सो ये डिफरेंस जो है वो आ ही जाता है. सो हम कभी कभी लाइफ को ना मैनेज करते करते एक्चुअली जीना भूल जाते हैं. सो ये बुक बहुत काम है, एलिगेंट है, इंटेलिजेंट है, परफेक्ट रिफ्लेक्टिव रीड है बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ. तो अगर आपको वीकेंड पे किताबें पढ़ना पसंद है या किसी बुक स्टोर में जाकर बैठना पसंद है, देन गो विद दिस बुक. और इसी के साथ थोड़ी देर में बात करने वाले मैचेस की भी. सो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour. Yeah, guys.

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ.

सो टुडे इज द मैच बिटवीन गुजरात एंड चेन्नई. तो आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन जो है वो चेन्नई को बनाए रखेंगे टॉप फोर की दौड़ में, या फिर शुभमन जो है वो आज वापस से सेंचुरी लगाएंगे और ये मैच का जो यू नो कॉम्पिटिशन है ये डिफिकल्ट हो जाएगा. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो भाई आज 66th मैच होने वाला है शाम को. सो भाई अगर हार गए तो ये मैच पूरा पलट जाएगा, इसीलिए चेन्नई के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. चेन्नई ने 13 मैचेस में से 6 मैचेस जो हैं वो अभी तक जीते हैं और 12 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में 6 नंबर पर है. उसे प्लेऑफ में रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीतना तो होगा ही. और दूसरी तरफ शुभमन गिल की कैप्टनसी वाली गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है. अब टीम ने 13 में से 8 मैचेस जीते हैं और 16 पॉइंट के साथ टेबल में दूसरे नंबर पर है. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. अब बात करेंगे प्लेयर्स की भी, बात करेंगे आज के मैच के अलावा कल क्या हुआ था, और बात करेंगे कि कोलकाता वर्सेस मुंबई के मैच में जहाँ पर स्कोर बहुत कम था, मुंबई ने 147 रन 8 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में बनाए थे और कोलकाता ने 148 मतलब जो उनका टारगेट था 6 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर 5 बॉल में बना लिया था. सो कल स्कोर बहुत कम था. वी विल टॉक अबाउट दैट. आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: So, अगर कल के मैच की बात करूं तो मुंबई के खिलाफ में कल मैच में पता है क्या हुआ, मनीष पांडे जो हैं वो पूरे टूर्नामेंट में पहली बार जसप्रीत बुमराह की बॉल पर आउट हुए। उन्होंने इससे पहले बुमराह की 49 बॉल्स खेली थी और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ बिना आउट हुए सबसे ज़्यादा बॉल खेलने वाले प्लेयर्स में दूसरे नंबर पर उनका नाम आता है और इस लिस्ट में शिखर धवन पहले नंबर पर हैं जिन्होंने बुमराह की 66 बॉल्स खेली थी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई जहां पर मैचेस की बात आती है ना, इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि यार उनकी फेवरेट टीम कौन सी है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। और कई बार तो ऐसा होता है कपल्स में कि दो तरह के फेवरेट टीम्स बन जाती है, मतलब आपको कुछ और पसंद है और के पार्टनर को कुछ और पसंद है। सो ऐसे ना कॉम्पिटिशन सा हो जाता है एंड आई रियली लाइक इट। ये जो हेल्दी कॉम्पिटिशन हैं इनको यू नो बैठ के डिस्कस करने में बड़ा मजा आता है। तो आपके घर में भी ऐसा होता है या फिर यू आर द ओनली वन जिसे मैच देखना पसंद है या आपका पार्टनर सिर्फ वो अकेला है जिसे मैच देखना पसंद है, तो आप बस यू नो कंपनी देने के लिए थोड़ा थोड़ा साथ दे देते हो। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर

So, आपको पता ही है कि कतर के लिए फुटबॉल कितना बड़ा फेस्टिवल जैसा होता है. और फीफा अरब कप कतर 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2.89 बिलियन कतरी रियाल इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट किया है इस पूरे इवेंट ने. सो ये बहुत बड़ा नंबर है बेसिकली. और अगर मैं सोचूं तो आप सोचो, होटल्स फुल हैं, फ्लाइट्स फुली बुकड हैं, रेस्टोरेंट्स पैक्ड हैं, शॉपिंग कर रहे हैं लोग, और ट्रांसपोर्ट का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो रहा है. मतलब स्पोर्ट्स इवेंट पूरी इकोनॉमी एक्टिवेट कर देता है यार किसी कंट्री की. एंड आपको पता है 3 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल फैंस जो हैं वो कतर आए सिर्फ टूर्नामेंट के लिए. और एवरीबडी वॉज सो हैप्पी कि यार कतर में कितना कुछ है देखने के लिए, इतनी सुंदर कंट्री. एवरीबडी वॉज सेइंग लाइक दैट. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो कतर का स्पोर्ट्स का जो स्ट्रैटेजी है वो काफी स्मार्ट है, ये तो कहना पड़ेगा. वर्ल्ड कप के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ है. कंटिन्यूस ग्लोबल इवेंट होस्ट किए जा रहे हैं और इसी वजह से टूरिज्म भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है. सो स्पोर्ट्स नाउ इक्वल्स लाइक ब्रांडिंग, टूरिज्म, बिजनेस, कल्चर ऑल टुगेदर. सो अगर आप एक कोई टूर्नामेंट करते हो ना किसी कंट्री में, उस कंट्री में सब कुछ ग्रो करता है. मतलब सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं लोगों को पसंद आता है उस कंट्री में घूमना, अच्छे अच्छे होटल्स जाना, ट्रैवल करना. स्पेशली जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन होता है लाइक मेट्रो, कैब्स, वो सब इस्तेमाल करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. सो आई विल से कि अगर आपके भी कोई नोन्स जो हैं वो इस टूर्नामेंट के लिए आए हुए हैं तो उन्हें अच्छे से पूरा कदर घुमाइए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनेस.
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड एंड मॉल ऑफ कतर और पाइए स्पेक्टेक्युलर

सो देखो ऐसा है कि इन्फ्लुएंसर्स तो आपने बहुत देखे हैं इंस्टाग्राम पर और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक और अदर प्लेटफॉर्म्स पे, बट डी इन्फ्लुएंसिंग जो है वो आजकल बड़े कम लोग करते हैं, तो मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैं आपको बस बताने आई थी कि क्या नहीं करना चाहिए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई पहले इन्फ्लुएंसर्स बोलते थे कि बाय दिस, और अब मैं उन इन्फ्लुएंसर्स को बस ये कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट वो ये भी बताएं कि प्लीज़ ये मत खरीदो। सोशल मीडिया पर अब एक नया ट्रेंड आ गया है, कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बात करते हैं डी इन्फ्लुएंसिंग की, बट बहुत सारे लोग अभी भी इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं। सो आई विल से कि भाई कभी कभी अगर आपको अगर कुछ पेड कोलैब नहीं है तो प्लीज़ बताओ कि ये ठीक नहीं है। सो मैं बस आपसे यही कहूँगी जो इम्पल्सिव और एक्सपेंसिव लग्जरी है ना, उन्हें आपको खुद से दूर रखना चाहिए। इफ़ यू हैव रियली रियल मनी कि आपके पास बहुत पैसा है, यू कैन इन्वेस्ट एनीथिंग, लाइक यू आप बहुत ही महंगा एक लग्जरी बैग खरीद सकते हो जो दीपिका पादुकोणे के पास है या आपके किसी फेवरेट एक्ट्रेस के पास है, देन इट्स ओके। बट अगर आप एक पर्टिकुलर लग्जरी बैग के लिए सेविंग कर रहे हो कि नहीं मुझे ये महंगा बैग खरीदना है जो कि एक्चुअली बहुत ही महंगा आता है, तो मैं आपको बता दूं कि उसकी ज़रूरत नहीं है। वो पैसे आप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। बिकॉज आजकल लोग ना कभी कभी लग्जरी चीज़ें अफोर्ड नहीं करते बल्कि जस्टिफाई कर रहे होते हैं, ईएमआई पर लाइफस्टाइल चल रहा होता है। और आई विल से कि लग्जरी ब्रांड का जो साइकोलॉजी है वो मोस्टली स्टेटस ब्रांड होता है, सो यू शुड बी लाइक थोड़ा सा अवेयर कि आपके लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेविंग्स सेक्रीफाइस हो रही हैं और सिर्फ इंस्टाग्राम वैलिडेशन के लिए या आपकी किसी किटी पार्टीज के लिए, देन यू शुड थिंक ट्वाइस कि भाई मुझे ये लेना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो एक्चुअली हम जैसे लोगों के लिए बने हैं, सो वी कैन बाय दैट, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे डिजाइन हैं। सो या थिंक ट्वाइस। सुन रहे आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। रेडियो

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Dana Dal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: भाई दुनिया की मोस्ट इमोशनल बेवरेज ऑफ कोर्स टी है, और आज इंटरनेशनल टी डे है, तो भाई करक के बारे में बात करना तो बनता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान, शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई अगर मैं चाय की ओरिजिन की स्टोरी की बात करूं तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी मानी जाती है, और मोस्ट हिस्टोरियन बिलीव चाय का कनेक्शन एंशंट चाइना से मानते हैं, जहां पर फिर स्लोली इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप और पूरी दुनिया तक ये पहुंच गया, और हर कंट्री ने चाय को अपने स्टाइल में अडॉप्ट किया है। इंडिया में कटिंग चाय, मसाला चाय, अदरक वाली चाय, और यहाँ मिडल ईस्ट की बात करूँ तो करक चाय, मिंट टी, घावा कल्चर, ये सब चलता है। जापान में माचा सेरेमनी होती है, यूके में आफ्टरनून टी कल्चर है, मतलब चाय ग्लोबली डिफरेंट है लेकिन इमोशंस सेम। और हर जगह पर, कतर में अगर मैं बात करूं चाय की, तो यहां पर कल्चर बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली करक का। सुबह ऑफिस से पहले, लेट नाइट ड्राइव्स पर, फ्रेंड्स मीटअप में, फुटबॉल डिस्कशन में, हर जगह पर चाहिए होता है एक कप चाय, यानी कि करक। और सबसे अच्छी बात यह है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और रिलैक्सेशन में हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए इमोशनली भी चाय कंफर्टिंग फील देती है। और चाय का बिगेस्ट मैजिक पता है क्या है? कॉन्वर्सेशन। कभी नोटिस किया है कि लोग यूजुअली बोलते हैं कॉफी पे मिलते हैं? नहीं ना, यही बोलते हैं यार चलो चाय पे मिलते हैं, लेकिन रियल डीप कॉन्वर्सेशन चाय पर ही होता है। सो आज इंटरनेशनल टी डे पर एक क्वेश्चन आपसे कि आपकी लाइफ का बेस्ट चाय मेमोरी कौन सा है? स्कूल कैंटीन वाला चाय, ऑफिस ब्रेक वाली चाय, या लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव वाली चाय? 3311106 इज माई नंबर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

सो आजकल कांस में आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स देख रहे हैं और यहाँ पर मैंने जो देखा वो मतलब थोड़ा सा यू नो डिफरेंट था। हमेशा कांस पे ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देती। कांस में इस बार सिर्फ फैशन नहीं, हिस्ट्री वॉक चल रही है भाई। नुवारी साड़ी लुक ना काफ़ी डिस्कशन में है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट था इस बार। बस लॉन्ग साड़ी नहीं होती ये बेसिकली, इस नुवारी डीपर कल्चर सिंबल इसे कहा जाता है, जो बेसिकली महाराष्ट्र साड़ी होती है। 9 yard साड़ी बेसिकली, एक जो साड़ी होती है वो 6 yards की होती है, बट ये 9 yard साड़ी है। स्पेशली महाराष्ट्रियन वुमेन जो है वो इसे पहनती हैं और इसका ड्रेपिंग स्टाइल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, फास्ट मूवमेंट के लिए, डेली वर्क के लिए। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ, फैशन से पहले फंक्शनैलिटी जो है पिछले टाइम पर देखी जाती थी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और हमने उसको सिर्फ एथनिक वेयर बना दिया है। और कांस जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जब इंडियन कल्चर प्रॉपरली रिप्रेजेंट होता है तो वो सिर्फ ग्लैमर नहीं, पूरा स्टोरी टेलिंग हो जाता है। सो आई वाज लाइक यार इस बार तो कांस पे बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है। बाय द वे, आपका फेवरेट कांस जो लुक है 2026 का वो कौन सा है? 3311063 इज माई नंबर। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

किताबों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: वीकेंड है और अगर आपके पास टाइम है तो भाई यही लग्जरी है. मतलब सिर्फ लग्जरी बैग्स ही लग्जरी में नहीं आते. अ पीसफुल स्लीप, हेल्दी माइंड, काम माइंड जिसे कहते हैं, और आपके कुछ अच्छे दोस्त, जेन्युइन फ्रेंड्स जिसे कहते हैं. अगर ये सब आपके पास है तो आपके पास लग्जरी है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो आज का लास्ट थॉट यही है क्योंकि मेरे हो गया है जाने का टाइम और आज थर्सडे भी है. सो आई हैव लॉट ऑफ प्लान्स जो मैं बनाने वाली हूँ. अब कितने एग्जीक्यूट होंगे वो मैं आपको कल बताऊंगी शाम को व्हेन आई विल कम विद टेक टॉक, जहां पर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे. लेकिन अभी मैं बस आपसे यही कहूंगी कि अगर आप भी अपने वीकेंड पे बहुत सारे प्लान्स और हेक्टिक प्लान्स बना रहे हो तो याद रखना फिर वो ना आपको पूरे हफ्ते परेशान करेंगे क्योंकि आप आराम नहीं कर पाओगे. थोड़ा स्लो हो जाइए, थोड़ा हाइड्रेट कीजिए खुद को और थोड़ा लाइफ को इन्जॉय करिए क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है. और मैं आपसे थोड़ी देर पहले बोल ही रही थी कि भाई बहुत ज़रूरी है, एक टाइम था जब हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वी कैन अफोर्ड गुड यू नो केक और पेस्ट्रीज. पर आज है, पर हमारे पास अब मेटाबॉलिज्म नहीं है. अब हमें लगता है कि यार ये तो कितनी सारी कैलोरीज के साथ आएगा, एक पेस्ट्री खाने के लिए हम कितने कैलकुलेशंस लगा लेते हैं जो पहले नहीं किया करते थे. तो हर टाइम का अपना एक अलग मज़ा होता है, उस टाइम को अच्छे से इन्जॉय कीजिए. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. अभी के लिए आई हैव टू से बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी वीकेंड.
1: Radio Olive Bar. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Yeah, Ghana, fresh. Fresh song of the hour. Yeah, Ghana.

मॉडर्न कट्स तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लूलू स्टोर्स में।

0: रेडियो ऑन एयर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi guys, this is Jurita Gandhi.
3: Radio Olive.
2: You are listening to me on Radio Olive.
4: Geo Binda.
5: Radio Olive,
4: I'm a
5: number one.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Olive Music Marathon. 1 ghanta, non-stop back to back gaane.

ये क्या 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं पाते हैं कड़ी मेरे लिख ले कहीं चल निकले कहीं आ

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Manu aur Anular ki awaaz mein jhol. Beautiful track. Itne sundar lyrics hain is gaane ke. और भैया वीकेंड आ चुका है. थर्सडे मे 21st है आज. कैसे हैं, क्या हाल चाल है मेरी जान? खुश तो बहुत होगे क्योंकि मैं भी बहुत खुश हूँ. बनता भी है This beautiful one is also coming your way. और ये तो हम सबकी फीलिंग है आज, क्योंकि वीकेंड आ गया है. And this movie I'm waiting. हाँ जी, all these amazing tracks are lined up for you. और भी बहुत सारी surprises हैं बीच में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपकी. 3311-1063 पर मैसेज कीजिए, बताइए How has the day been so far? What's the mood for this Thursday? क्या प्लान्स है वीकेंड के? सब कुछ विस्तार में लिख के बता दो, मैसेज कर दो, नहीं तो कॉल कर दो 4444-1063. Stay tuned. And Jio Bindaas.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
3: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
4: हाय, आई एम राजकुमार राव।
5: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
6: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में एक तरफ फ्रॉम द मूवी वेक अप सेट ओनली ऑन रेडियो ऑल 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर और सुबह का भूला भटकता हुआ दोपहर में आ गया है।
1: ऐसा नहीं है भाई हम भटकते नहीं है, हम जहाँ जाते हैं वहीं रास्ता बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी, अभी हुआ ये था कि मैं जब केरला में नया नया गया था तो मुझे वहाँ के रास्ते पता नहीं थे, ऐसा मेरे घर वाले सोचते थे,
0: तो
1: मगर मुझे ज्योग्राफी पता थी।
0: व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस?
1: तो मैं रास्ता नहीं भी पता हो मंजिल तक पहुंच ही जाता हूँ, कोई सेंस नहीं बनती ना इस बात,
0: बिल्कुल भी नहीं,
1: बस मेरा मन क्या मैंने बोल दिया आज वीकेंड है दोस्तों, जरूरी नहीं है आपकी खुशियां सेंस बनाए, मन किया तो करो।
0: एग्जैक्टली सही बात है, बिंदास एंजॉय करने का है वीकेंड को, और जो स्ट्रेस काम वाम का लेके रखते हैं हम पूरा हफ्ता, वो ये दो दिन पे नहीं रखना है जी, ढाई दिन एक्चुअली,
1: जिनका एक दिन है वो भी मत रखिए।
0: हाँ प्लीज डू नॉट डू दैट टू योरसेल्फ, बिकॉज पूरा वीक इंतजार करते हैं और ऐसी चिंताओं में निकाल देंगे कैसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या यार ऐसे टेंशन नहीं लेना, तनिषा यहाँ पे बढ़िया बढ़िया गाने सुनाएगी, बातें आपके साथ शेयर करेगी, तो चिल मारिए एग्जाम बढ़िया तरीके से।
0: कूल सॉन्ग ऑफ द आवर भेज रही हूँ आपके लिए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: लगा और हो जा रिचार्ज. ऑलिव रिचार्ज.
3: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास.
2: ऑलिव रिचार्ज.
4: इन एसोसिएशन विद
5: होम्सार अस. We complete your home. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
6: Commercial Bank. We are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: नो
1: बिल्कुल
0: shouldn't be doing that.
1: किसी को भी ऐसे जलील करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, दोस्ती में ठीक है बट
0: दोस्ती इज अ डिफरेंट थिंग. वो तो प्यार जताने का एक तरीका होता है.
1: वही तनिशा से कितना प्यार जताया हम लोगों ने.
0: बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर हो रहा है.
1: ऐसा थोड़ी ना है.
0: लेकिन यार इन जनरल इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी एंड यू नो गुस्सा आ रहा है किसी बात पे और लग रहा है कि आपके वर्ड जैसे कटाक्ष निकलने वाले हैं और इट माइट हर्ट और ऑफेंड समबडी, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ बिकॉज इट कैन लैंड यू इन जेल. दैट टू फॉर अप टू 3 months.
1: ओके,
0: सो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बेयर ना करने पड़े
1: तो ध्यान रखिए तनिषा मैडम आप.
0: बहुत कंट्रोल करती हूँ मैं, बता रही हूँ मैं सच में.
1: और भी कंट्रोल कीजिए.
0: हाँ, कोशिश तो है. वेल, सेंडिंग शुगर एंड अला इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. शिव बिंदास
1: मेरी जान. शुक्र.

0: अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में केदारनाथ से ब्यूटीफुल ट्रैक काफिरान ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। त्रिशा आपके साथ ऑल ओवर रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, और एक और ब्रांड न्यू जगह आ गई है फॉर द स्पोर्ट्स लवर्स। सो 321 कातर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम ने 321 ई स्पोर्ट्स लाउंज जो है वो ओपन किया है म्यूजियम में ही, एंड इट इज़ द फर्स्ट ओलंपिक म्यूजियम इन द वर्ल्ड टू हैव अ डेडिकेटेड ई स्पोर्ट्स गेमिंग स्पेस। यस, सो ये तो देखना बनता है, ज़रूर देख के आइएगा। वीकेंड भी आ गया है, मौके पे चौका मार ही लो मेरी जान। फिलहाल भेज रही हूँ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, guys.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: लाइफ में आपकी एबिलिटी टू गेट सम क्लैरिटी ताकि आपको मिले गारंटी फॉर फ्यूचर की सिक्योरिटी विद बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी एंड जियो बिंदास विद ऑडेसिटी और अगर ये ना हो आपकी रियलिटी तो डार्लिंग फिलहाल के लिए हैव सम टी
1: रेडियो ऑलिव विशेस यू हैप्पी इंटरनेशनल टी डे
3: नमस्कार मैं हूँ आर माधवन आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: Tanisha. Arijit Singh और नेहा कक्कर की आवाज में मैं तेरा बॉयफ्रेंड फ्रॉम द मूवी रैप्ड ऑल ऑन रेडियो 11.6.3 FM. तनिषा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और भाई मैं डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि हॉट वेदर कंडीशंस रहने वाली हैं अक्रॉस द वीकेंड, और पर हवाएं बहुत तेज होंगी और हाई वेव्स की भी वार्निंग है. सो टेम्परेचर विल बी बिटवीन 28 to 30 degrees. तो अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स बनाइएगा, और मरीन वार्निंग तो ऑलरेडी थी तो जरा ख्याल रखिएगा अपना. मेरी जान क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो यार. माय दिल गो जूम, बोलता है जूम बोलता है, आई डोंट नो, मैं कुछ तो गा ही देती थी. सो या दिस ट्रैक इज कमिंग योर वे. लव दिस वन आतिफ असलम की आवाज में, और रेट्रो का जो तड़का आज आपको मिलने वाला है.
1: चला जाता हूँ
0: ओए होए
1: किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए.
0: हाँ जी, दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इज कमिंग योर वे, और अलोंग विद दैट सावी कालो भी इंतजार कर रहे हैं.
2: मिट्टी दा बाण टेर मिलांगे, हाय नी आपा फेर मिलांगे, कदे ना कदे फेर मिलांगे.
0: All these amazing tracks are coming up your way. Filhal sunte hain zabardast hit in the voice of Rahat Fateh Ali Khan sahab aur legendary Tulsi Kumar ki awaaz mein. Once upon a time in Mumbai se tum jo aaye zindagi mein baat ban gayi. Weekend ko dedicate kar do ye to.
3: Ab suniye Olive ka zabardast hit.
4: Zabardast hit.

0: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: Olive Recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
4: इन एसोसिएशन विद
5: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम शाइन स्मार्टर दिस सीजन विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइन सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके
6: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: अच्छा।
1: शान और गायत्री अय्यर की आवाज में सलाम नमस्ते से माई दिल गुज सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए, उसके बिना मैं फंक्शन नहीं कर पाती ना। आई कैन नॉट फैदम जो लोग चाय पीते ही नहीं है वो कैसे फंक्शन करते हैं। आई डोंट नो, आई मीन आप मुझे कितने भी कॉन्स बताने की कोशिश करो, मुझे सिर्फ प्रोज ही नजर आते हैं चाय पीने के। घर जाते ही नो मैटर व्हाट टाइम आई एम गोइंग बैक होम फ्रॉम ऑफिस, यू नो इट कैन बी 6, इट कैन बी 8, इट कैन बी 9, इट कैन बी 10, मुझे घर जाके चाय पीनी है, उसके बिना मैं सो नहीं पाऊंगी। थोड़ी दिक्कत है जीवन में, बट या आई लव चाय दैट मच। एंड इतनी भारी भरकम गर्मी में भी चाय पीने का जज्बा रखती हूँ मैं। अगर आप मेरी ही तरह हैं तो हाई फाई ले लो मेरी जान। एंड राइट नाउ सुदेव एंड सिमरन आर एट सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट, जहां पर आज हम टी डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारे कुछ लिसनर्स के साथ चाय और स्नैक्स का मजा ले रहे हैं, उसकी सारी यू नो झलकियां जो हैं वो देखने को आपको मिलेंगी हमारे सोशल मीडिया पर। सो फटाफट से फॉलो कर लो radioolive.qa और सुधीराव रेडियो ऑलिव जुबिंदास।
2: International Tea Day Special, Tea Talks and Memories.
3: Brought to you by Salt Mango Tea. Salt Mango Tea Restaurant. Authentic taste, great ambience and budget friendly. Matar Kadeem. Call 5164

0: मॉडर्न कट्स तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
2: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: ऑलिव रिचार्ज
4: इन एसोसिएशन विद
5: होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
6: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: हाय, मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: तनिषा
1: सावी कालो की आवाज में आप फिर मिलेंगे. बहुत सुंदर गाना है, आई लव दिस, और इसके लिरिक्स इतने ज्यादा प्यारे हैं क्या ही बताऊं. तनिषा के साथ हैं आप, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है. यहाँ पर और वैकी विजडम में आज हम बात करते हैं मिडिल एजेस की, नींद की बेसिकली. सो ड्यूरिंग मिडिल एजेस जो लोग थे वो दो फेजेस में सोया करते थे, जो कि हम आज भी कर रहे हैं. सो वो चार घंटे की पहले नींद लेते थे एंड देन दे वुड स्टे अवेक फॉर लाइक 1 to 3 hours. एक से तीन घंटे के बीच में वो जागते थे और काम करते थे, वट एवर दे वॉन्ट टू डू, यू नो. एंड देन दे वुड गो बैक टू स्लीप फॉर अनदर 4 hours. इस तरह से वो अपने 8 घंटे की नींद पूरी करते थे. और हम 8 घंटे की नींद पूरी तो नहीं कर पा रहे पर दो फेजेस में ज़रूर सो रहे हैं. मेरे साथ तो यही हो रहा है एटलीस्ट, यू नो. आई वुड स्लीप एंड देन द मिडल ऑफ द नाइट ऐसे जाग जाती हूँ कि बस री एनर्जाइज्ड, रिफ्रेश हो चुकी हूँ मैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हो गई मेरी नींद पूरी. और फिर मैं फ़ोन चला लेती हूँ, फ़ोन चलाते चलाते एक आधा घंटा निकल जाता है, फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ. फिर सुबह जब मैं उठती हूँ तब जो टायर्ड महसूस करती हूँ कि भाई नींद नहीं पूरी हुई बिकॉज ऑफ दैट फ़ोन. यस, अब याद आता है कि जब मम्मी बोलती है ना सब कुछ इस फोन की वजह से हो रहा है. सही बोलती है यार, करेक्ट बात है एकदम. इसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है पर आदत से मजबूर. सुनते रहिए रेडियो जियो बिंदास.

गजनी मूवी से ए बच्चू, और आप झूमने से तो कौन रोक सकता है जी, वीकेंड आ गया है अब तो झूमेंगे। यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ ऑल ओवर रिचार्ज चल रहा है। अबर और वक्त हो चुका है लेम जैम्स का, वक्त हो चुका है और इट इज इंटरनेशनल टी डे टुडे। तो ऑब्वियसली मैं पिछले 3 दिन से चाय वाले सवाल पूछ रही हूँ, आज ना पूछूं ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मुझे बताना है एक ऐसे देश का नाम जहाँ पे चाय नहीं मिलती। लेम जैम्स है, ठीक है, लॉजिक में मत जाना, फिर बोलोगे तनिषा क्या पूछती रहती है। लेम जैम्स है। सो सवाल सुने, कौन सी कंट्री है जहां पर चाय नहीं मिलती, उसका नाम आपने मुझे बताना है। 3311-1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444-1063 पर। ऐसी कंट्री जहां पर चाय नहीं मिलती। सेंडिंग पान की दुकान सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाज में, ओ रोमियो से स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: Jackman की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: लाइफ में आपकी एबिलिटी टू गेट सम क्लैरिटी ताकि आपको मिले गारंटी फॉर फ्यूचर की सिक्योरिटी विद बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी एंड जियो बिंदास विद ऑडेसिटी। और अगर ये ना हो आपकी रियलिटी तो डार्लिंग फिलहाल के लिए हैव सम टी। रेडियो ऑलिव विशेस यू हैप्पी इंटरनेशनल टी डे।
4: हाय मैं हूं सोहाली खान एंड यू लिस्निंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Olive laga aur ho ja recharge.
7: Olive recharge. Tanisha ke saath.
8: Olive recharge. RJ Tanisha ke saath. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindaas.
9: In association with
10: Homesar Us, we complete your home. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
11: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: तनीशा
1: तनीशा राहत फतेह अली खान साहब और आशीष कौर की आवाज में तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, मैं तो वीकेंड को डेडिकेट कर देती हूँ ये गाना। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनीशा आपके साथ, ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। सो लेम जैम्स का आज का मेरा सवाल था कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर चाय नहीं मिलती है। लॉजिकली जाओगे तो हर जगह मिलती है मेरे दोस्तों, बुरा नहीं मानना है इस बात का। लेम जैम्स है तो थोड़ा लेम तरीके से सोचो। यस, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर चाय नहीं मिलती। चलो हिंट में दे देती हूँ, उस देश का नाम जब आप लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर चाय नहीं मिलती है। इससे ज़्यादा तो मैं जवाब ही दे दूँ ना, फिर क्या ही बताऊं। और आपको एक और मौका दे रही हूँ। वैसे मुझे वहाँ यहाँ पे काफ़ी सारे आंसर्स आए हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर करेक्ट। आई फील सो प्राउड राइट नाउ बिकॉज यू नो हमारा लेमनेस का जो लेवल है वो फुल ऑन मैच कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट वन मोर चांस फॉर यू, बताएं मुझे, मैसेज कीजिए 3311063 पर एंड टेल मी कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर चाय नहीं मिलती है। सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, या ओहानी सिंह की आवाज में ब्राउन रंग। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

पिया क्या आपका काजल चुरा के ले गया है जो आप श्रृंगार नहीं कर पा रही हैं उसकी बनाई कोई बात ही वाला बताओ। You all listening to Radio 106.3 FM तनिषा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर। और मैंने लेम जाम्स में सवाल पूछा था कि कौन सी कंट्री है जहाँ पर चाय नहीं मिलती, और मुझे डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं किया गया, मतलब एक दो ऐसे लॉजिकल आंसर्स देने की कोशिश करी है, इट्स ओके हो जाता है कोई बात नहीं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर एंड दैट इज चाइना। यस आई नो आपका जवाब सुन के गुस्सा सा तो आ ही रहा होगा, बट कोई बात नहीं यार, वीकेंड है, याद रखो इस बात को, सारा गुस्सा दूर कर दो। थैंक यू रोहित, केजे, विजय एंड दिनेश, अदील, हेचम एंड इसरार, ऑल द पीपल हु हैव आंसर्ड, थैंक यू सो मच मेरी जान, मेरी लेमनेस में मेरा साथ देने के लिए और मेरा वीकेंड और सुंदर बनाने के लिए। यार प्यारे हो आप बड़े। तो अभी हो गया मेरे जाने का वक्त, मिलेंगे अब सैटरडे दोपहर 2 बजे। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान, ठीक है? एंड इन्जॉय योर वीकेंड टू द मोस्ट। काम का स्ट्रेस हम वीक के दौरान ले लेंगे, अभी वीकेंड का इतना इंतजार किया है तो इसको भी वरी में निकालेंगे क्या? ऐसे नहीं होता। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड इन्जॉय योर वीकेंड, और अपने लिए वक्त जरूर निकालना, ठीक है? और सुनते रहो रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान।

0: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

दोस्तों आज चाय पिया कि नहीं पिया? देखो यार, जिनके लिए चाय फेवरेट है, जिनके लिए चाय जो है वो सब कुछ है, उनका एक दिन नहीं होता, उनका हर दिन होता है। आज इंटरनेशनल टी डे है, तो मैंने सोचा सबसे पहले आज शुरुआत जो है इसी का नाम लेके की जाए। मैं जी सुनियो कि दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है और वीकेंड भी चालू हो चुका है। यार देखो, जो भी हो जाए, गर्मी हो सर्दी हो, चाय का कप जो है वो नहीं रुकना चाहिए। चाय नहीं बुरा माननी चाहिए, क्योंकि चाय जो है ना वो तब हमारा साथ देती है जब हमारा मूड खराब होता है, हमारा मूड अच्छा होता है, हमारी तबीयत ठीक होती है, हमारी तबीयत नहीं ठीक होती है, हर सिचुएशन में चाय जो है वो बस आय हाय हुई होती है। देख रहे हो ये शायरी कैसे निकल रही है। अभी फिलहाल आप कहाँ पे निकले हुए हो, क्या करने वाले हो, वीकेंड का क्या सीन है, 3311063 पर आप मुझे व्हाट्सएप भेजिए, आपके दिन के बारे में बताइए, और मैं आज कहीं पे गई थी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में वापस लौट के। जी ओ बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।
3: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरभजन मान। तुम सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Supported by Homes Are Us. We come.

0: जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज इंटरनेशनल टी डे है, सो आज वादा था हमारे कुछ लिसनर से मिलने का। आपके साथ बहुत दिन से ये कॉन्टेस्ट जो था वो आप लोगों के लिए चल रहा था कि हम इस इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट करने वाले हमारे कुछ लकी लिसनर्स के साथ सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में। सो आज हम वहां पे गए, हमारे कुछ लकी लिसनर्स थे जिनको हमने सिलेक्ट किया था, उनके साथ आज के दिन को सेलिब्रेट किया, चाय पी, फन किया, खाना पीना खाया। सो वो कैसा रहा वहां का माहौल उन लोगों के लिए, हमारे उन लिसनर्स के लिए जो कि नहीं आ सके, आई मीन जिनको हम नहीं बुला सकते, सबको नहीं बुला सकते क्योंकि आप लोगों का प्यार बहुत सारा, बहुत सारे हो। सो वो हमारे सोशल मीडिया पे जो है वो आप जरूर देख पाएंगे। एंड बाय द वे, आज चाय का दिन है तो चाय के बारे में भी थोड़ी सी बात जो है वो कर लेते हैं। आप अपने तरीके से बता सकते हो यार कि आपको जो है वो किस तरह की चाय पसंद है। कोई कोई कोई लोग हैं जो अपनी चाय में मीठा नहीं पीते हैं, है ना, हेल्थ इश्यूज की वजह से, या फिर उनको अच्छा ही लगता है, बहुत कम मीठा पीते हैं। कभी कभी कहते हैं कि भाई चाय में पत्ती भी जोर से डालो एकदम ठोक के, और मीठा भी ठोक के डालना चाहिए एकदम बढ़िया वाला। और कई लोग चाय में दूध बहुत ज्यादा लेते हैं, मुझे मेरी चाय चाय की तरह पसंद है, एकदम ऐसा हल्की सावली सी चाय जो है ना वो मुझे बड़ी पसंद आती है। तो आप मुझे बताइए इस इंटरनेशनल टी डे पे आपको किस तरह की चाय पीनी पसंद है। 3311063 पर सिमरन कौर आपके साथ, जी ओम बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: रेडियो ऑन एयर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Life में आपकी ability to get some clarity, ताकि आपको मिले guarantee for future की security, with बहुत सारा prosperity and Jio Bindaas with audacity. और अगर ये ना हो आपकी reality, तो darling, फिलहाल के लिए have some tea.
0: Radio Olive wishes you Happy International Tea Day. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us. We come

0: को पसंद है, क्योंकि चाय के मामले में ना, मतलब जो चाय लवर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चूजी होते हैं, वो हर जगह पे चाय नहीं पी सकते, उनके पक्के अड्डे होते हैं, उनको एक पक्के तरीके की चाय पीनी होती है कि अगर मीठा तेज है तो तेज चाहिए, मीठा कम है तो कम चाहिए, मसाला ये है तो ये चाहिए, अदरक है तो अदरक ही चाहिए, और मतलब कई लोग सैफ्रन टी पीते, मतलब अपना अपना सबका एक ढंग जो है ना वो चाय को लेके होता है।
1: चाय जो कड़क बनती है वो बनती है अदरक से, अदरक और इलायची के बिना तो चाय का स्वाद ही अधूरा है। और रही बात शक्कर की, तो वो तो आती जाती रहती है शक्कर, शक्कर अगर थोड़ी डालो तो ठीक है, मीडियम डालो तो ओके है, ज्यादा डाले तो बहुत मीठी है भाई, वो नहीं जाती पेट में, फिर चाय का मजा किरकिरा हो जाता है पता नहीं क्यों। मेरा तो ये मानना है, मैं तो ऐसे ही पीता हूँ, मीडियम या लो शुगर ही पीता हूँ। और रही बात कड़क की, तो कड़क मतलब दवा के चाय पत्ती और उसके ऊपर दूध भाई, एक नंबर चाय।
0: कुछ लोग जो है ना बहुत दूध वाली चाय, सब मलाई डालते हैं ना, दूध की मलाई वो डाल के चाय पीते, वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं पी जाती है यार। आप बताइए, आप अपनी चाय को लेके कितना चूजी हैं, किस तरह की चाय आपको पसंद है? 3311063 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस नोट भेजिएगा। एंड क्या होता है कि जैसे मेरे भी ना कतर में कुछ अड्डे हैं जहां पर मुझे पता है कि मुझे अगर चाय चाहिए तो मैं वहीं पे जाऊंगी, मैं हर जगह की चाय जो है वो ट्राई नहीं कर सकती, और मैं चाय सूंघ के बता देती हूँ, चाय देख के बता देती हूँ कि मुझे चाय पीनी है कि नहीं पीनी है। सो बताइए आपका चाय का क्या सीन है, 3311063 पर।

बिल्कुल ये गाने भी आएंगे, लेकिन चाय की बात हो रही है तो ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है, चाय वाला। नेहा कक्कड़ ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से गाया है। ये गाना वो जो नॉर्मल गाने गाती है ना, उसमें से हटके ये गाना 3-2-1 एंड गो।

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
0: Geo Bindas.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड Airport Road और पाइए स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening. Make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: अब मुझे आप लोगों का थोड़ा सा समझ लगता है, बताती हूँ क्या। हाँ जी, देखो ये गाना ना हिंदी में ना पंजाबी में, मराठी में है गाना, है राइट। तो जब भी ये गाना चलता है तो उसमें चाल शेकी शेकी ही मुझे एक नंबर समझ लगता है, चाल शेकी शेकी। और उसके बाद जो भी गाना चल रहा होता है मैं अपने मन से लिरिक्स लगा के साथ साथ गाने लग जाती हूँ। और मुझे पता है कि आप लोगों के साथ भी तब होता होगा जब आप पंजाबी गाने सुनते हो लेकिन आपको समझ नहीं लग रहा, लेकिन आपको धुन लिरिक्स ये समझ नहीं लग रही लेकिन धुन अच्छी लग रही है, गाना अच्छा लग रहा है, तो आप गाते हो, राइट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबके मैसेजेस के लिए। इंटरनेशनल टी डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको आपकी चाय जो है वो किस तरह से पीना पसंद है, क्योंकि सबका अपना अपना स्वाद होता है, अपनी अपनी चाय को लेके जितने भी टी लवर हैं वो टची होते हैं यार।
1: हाय गुड इवनिंग सिमरन, सो व्हेन इट कम्स टू चाय तो मुझे सिर्फ अपने हाथ की चाय पसंद है, क्योंकि मुझे कुछ मसालास का जो बैलेंस चाहिए इन माय चाय दैट आई थिंक ओनली आई कैन मेक इट फॉर माय सेल्फ।
0: हां जी,
1: एंड आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ परफेक्ट अड्डा इन कतार टू हैव दैट काइंड ऑफ चाय, बिकॉज़ मुझे अदरक, इलायची, सौंफ,
0: हाय हाय,
1: फ्लेवर चाहिए होता है चाय में। सो इफ यू नो एनी अड्डा व्हिच सर्व्स चाय लाइक दिस, प्लीज आल्सो लेट मी नो। थैंक यू
0: सो मच। मैं आपको ऑफ एयर बता देती हूँ जहाँ की चाय मुझे पसंद है, क्योंकि अगर हम किसी ब्रांड का नाम लेते हैं तो हम उनसे पैसे लेते हैं, इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ अभी। बट यस, बहुत सारे लोगों को अपने हाथ की चाय पसंद होती है। इस बात से मुझे मेरी दीदी याद आती है, मेरी दीदी को उनके खुद के हाथ की चाय जो है पसंद है। और शुरू से मेरे से मैंने पराठे बना लेती हूँ, मैं काम चला लेती हूँ, मैं छोले बना लेती हूँ, मैं काम चला लेती हूँ, लेकिन मेरे से चाय नहीं बनती, मैं अपने हाथ की चाय पी ही नहीं सकती हूँ यार।
2: चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
0: सो बताइए, इंटरनेशनल टी डे पर चाय का मसला भी साथ साथ रखेंगे, वीकेंड का मसला भी साथ साथ रखेंगे, मैच का मसला अभी तक साथ नहीं हुआ है, अगले घंटे में आपको मैच की अपडेट जो है वो देने वाली है। तो बताइए आपको आपकी चाय किस तरह से पसंद है। 3311063 पर आप अपनी चाय को कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे वो भी आप बता सकते हो यार। जी बिंदास।

0: बात खत्म ना यार, जाने सारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को नहीं भी बताते तो भी चलता यार, पर्सनल रखो चीजें। लेकिन हमने स्टोरीज ऑलरेडी जो है हमारे रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पे डाल दी है, तो जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये होना नहीं था। दिल डूबा नीली आंखों में, ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। महबूबा बेबी जनमन शोना सब बोल दिया, अभी मैच के बारे में बताती हूँ। गुजरात और चेन्नई का मैच चल रहा है, गुजरात ने अभी खेल रही है तो 12 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 124, एक भी विकेट नहीं गया है। सो ये है मैच के हाल। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, चेन्नई को या गुजरात को, 3311063 पे बताइए। एंड उसके साथ साथ चाय और वीकेंड का जो है वो माहौल भी बना रहना चाहिए, आज इंटरनेशनल टी डे है। किस तरह की चाय जो है वो आपको पसंद है, आपकी चाय अगर पूछा जाए कि कैसी बनाई जाए तो कैसी होनी चाहिए आपकी चाय, वो भी बताओ यार। T20 स्कोर अपडेट
1: presented by Brooks Cafe, sweetness that hits straight to the heart. Dadda ki most loved kulfi ab bilkul paas, Madar Kadim Bakra VFS Global ke side, Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Brought to you by Ibad Sports, gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
1: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.

0: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
0: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
4: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
0: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.
5: लाइफ में आपकी एबिलिटी टू गेट सम क्लैरिटी ताकि आपको मिले गारंटी फॉर फ्यूचर की सिक्योरिटी विद बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी एंड जियो बिंदास विद ऑडेसिटी. और अगर ये ना हो आपकी रियलिटी तो डार्लिंग फिलहाल के लिए हैव सम टी.
4: रेडियो ऑलिव विशेस यू हैप्पी इंटरनेशनल टी डे.
6: मैं हूं अनिल.

0: बैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Supported by Homes Are Us. We complete.

आ गया। ओ हो हो आपके साथ। देखो इंटरनेशनल टी डे है, वाइब पूरी सेट है।

पे आपको एक राइट साइड में मिल जाएगा फीचर, जैसे आपने क्लिक किया आपकी फोटो खिंच जाएगी और आपको पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो फोटो अपने आप ही पोस्ट हो जाती है। तो लोगों को वो इंस्टेंट फीचर समझ ही नहीं लग रहा है, सेम फोटो 10 बार 10 बार 10 बार पोस्ट किए जा रहे हैं और सेम फोटो में 10 बार 10 बार क्लिक कर रहे हैं, मैं भूल रही हूँ भाई क्या आ रहा है। तो जब तक आप उनकी 10 बार फोटो वो देख नहीं लोगे जो कि उन्होंने बाय मिस्टेक मतलब क्लिक करके अपलोड कर दी, उनको नहीं पता है कि अपलोड हो रही है, उनके चक्कर में बाकी लोगों की अपडेट रह रही है। तो ऐसे टाइम पे मैं पता क्या कर रही हूँ, मैं म्यूट कर रही हूँ उन सारे लोगों को जिनकी स्टोरीज मैं, जिनके इंस्टेंट मैं नहीं देखना चाहती हूँ। एंड आज ऑफिस में भी बात कर रहे थे कि ये बहुत जल्दी फीचर जाने वाला है, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं लग रहा है, जिनको समझ लग रहा है उनको उनको वो यूज ही अलग तरीके से कर रहे हैं, दिमाग खराब हो गया है। एक स्टोरीज देखो, इंस्टेंट देखो, क्या करना है यार लाइफ में।

0: 6 only. Hurry!
1: Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर 1 आरजे
6: सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joya Lucas. Joya Lucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Supported by Homes R Us. We complete your

0: ये जो हड़ थोड़ी देर करके हंसती है, इतनी हंसी किस बात की आ रही है आपको? और ये हंसी भी बड़ी फेक लग दी है। मैं कभी ऐसे हंसी नहीं सकती, मैं ऐसे हंस सकती हूँ यार। 6:50 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं, वीकेंड है जी।
1: कंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा।
0: कैसे होते हैं फेवरेट लोग बताती हूँ।
2: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: आपने कोई नई सीरीज देखी, आपने कोई नई फिल्म देखी, आपने कोई नई शॉपिंग की, आपने कोई नया खाना खाया, आपने कोई नया कैफे देखा, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ, आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ, अगर वो सारी बातें जब अपनी आपकी लाइफ में होती हैं, जब आप उस इंसान के बारे में सोचते हो कि ये बातें उससे शेयर करनी है, उसको ये बताना है, मैंने ये खाया था, अरे ये गंदा था, अरे ये अच्छा नहीं था, ये इससे मिला, मैं इसने मुझे ये बोला, वो सारी बातें आप उस इंसान से करना चाहते हो, वो होते हैं आपके फेवरेट लोग। सो अगर आपकी जिंदगी में वो फेवरेट है आपका कोई इंसान, तो भाई साहब लकी हो आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं यार जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन कोई है नहीं है। सो अगर है आपकी जिंदगी में तो उनको कभी कभी बता दिया करो। आई नो हमको ये हो जाएगा, अरे यार इसको ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ, लेकिन ठीक है कभी कभी बताना जरूरी होता है, तो आज बता दीजिए। सिमरन कौर आपके साथ, रेडियो विद नास।

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Gio
1: Bindas. क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
3: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
4: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 reals growth पर पाइए एक coupon.
3: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
4: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
5: ब्रेड मा ब्रेड मा
6: Bradma's Wholesale Market at Salwaru. Ample parking, convenient location.

चावा। बिल्कुल मावा ठंडिया चावा यार। माँ होती है ना जब, तो इतना एहसास नहीं होता। जब माँ पास नहीं होती है, माँ इस दुनिया में भी नहीं होती है, तब आपको एहसास होता है कि आपने अपनी जिंदगी में जो है वो क्या खोया है। मैं कह रही सुनियो कि दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े ना।

जब भी माँ बाप की बात आती है, सलमान खान जो है ना, वो अपने माँ बाप के बहुत ज्यादा करीब है यार। जब उन्होंने एक अकेलेपन वाली पोस्ट डाली थी तो बाद में सभी जो उनके लिसनर्स थे उनके जो फैंस थे वो परेशान होने लग गए थे एंड ऑल। फिर उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट डाली कि यार मैं मम्मी पूछ रही थी कि क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सैड हूँ या अकेला हूँ टाइप्स, ऐसा कुछ तो था। सो या उनको मम्मी से जो है वो अपने बहुत ज़्यादा प्यार है ना। सो प्यार जब आपको अपने अपनों से होता है ना, तो उस टाइम पर आप जो है वो कोशिश करते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसा बढ़िया खरीद सके जो कि उनको बढ़िया लगे। सो गोल्ड से बेहतर, डायमंड से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। सो शाइन स्मार्टर विद द सीजन मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आपके लिए। वो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का ऑफर लेके हैं, चाहे आपने कहीं से भी खरीदी है, बढ़िया वाले डिज़ाइन है, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके आप जो है वो डिज़ाइन जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और ग्रेट न्यूज़ है, इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, इसकी वजह से आपको 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस जो है वो सेव कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जाइए उनके शोरूम पर और जाके चेक करिए आपको क्या चाहिए, अपने लिए या किसी और के लिए भी।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: लाइफ में आपकी एबिलिटी टू गेट सम क्लैरिटी, ताकि आपको मिले गारंटी फॉर फ्यूचर की सिक्योरिटी विद बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी एंड जियो बिंदास विद ऑडेसिटी। और अगर ये ना हो आपकी रियलिटी, तो डार्लिंग फिलहाल के लिए हैव सम टी। रेडियो ऑलिव विशेस यू हैप्पी इंटरनेशनल टी डे।
4: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। सपोर्टेड बाय होम्स आर अस, वी कंप्लीट।

जोड़ियों की तरह की हलचल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर याव के साथ। और मैच के हाल में आपको बता देती हूँ, गुजरात और चेन्नई का मैच चल रहा है। गुजरात ने पहले खेलते हुए 230 रन का टारगेट दिया है और चेन्नई अभी खेल रही है। 2.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 29, दो विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं। सो 106 बॉलों पे 201 रन डार्लिंग जीतने के लिए चाहिए। बेबी दा ड्रामा नहीं खत्म होता।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Olive, 106.3 Radio Olive.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ
4: Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: जी मैं कहती सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ 7:37 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। फिर थैंक यू सो मच जी स्वीटहार्ट।
1: शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीटहार्ट है।
0: नंबर के स्वीट आर्ट हो यार, थैंक यू सो मच। हम सब ने जैसे कि मैंने बताया कि आज इंटरनेशनल टी डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया आप लोगों के साथ, हमारे कुछ लकी लिसनर्स के साथ हम आज गए थे सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में, हमने बहुत सारा फन किया, हमने खाया पिया, गाने गाए और वो रील जो है वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगी हमारे इंस्टाग्राम पर सैटरडे के अराउंड, है ना। सो स्टोरीज हमने डाली हैं, जो भी फन हमने किया एक छोटा सा आप देख सकते हैं टीजर उसका। देखो यार सोशल मीडिया ना बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए आज जैसे हम हमारे लिसनर्स से मिले, ठीक है, और बहुत सारे लिसनर्स ने पार्टिसिपेट किया था लेकिन अब सबको नहीं बुला सकते हैं, बट वो जो फन हमने वहाँ पे किया वो कैप्चर किया और वो सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको दिखाते हैं। सो मेक श्योर कि आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारा यूट्यूब का चैनल है जो, इन सब पे जो है वो आप हमारे साथ बने रहिए एंड सारी अपडेट्स को फॉलो करते रहिए। बहुत सारे कॉन्टेस्ट हम हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही रन करते हैं जो कि सोशल मीडिया पे ही होते हैं सिर्फ, वो रेडियो पे नहीं होते हैं, और बहुत सारे कॉन्टेस्ट हम रेडियो पे भी खेलते हैं। सो सारी इन्फॉर्मेशन जो रेडियो पर है वो हमारे सोशल मीडिया पे भी हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं एकदम ऑन टाइम। सो मेक श्योर कि आप हमें फॉलो करें एंड बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, किसी भी लिंक पे क्लिक मत करिएगा, किसी भी इंसान को फोन पे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल भी मत दीजिएगा एंड या दैट्स इट, यू नीड टू बी वेरी वेरी वेरी वेरी केयरफुल। ओके सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

सोने कितना दिखी हाल चाल सत सिमरन कौर है 7:54 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। अब आप लोगों का नाम ले रहे वाली हूँ मैं रेडियो पे। वीकेंड हैप्पी वीकेंड। अब आप सब लोग बाहर हैं मुझे सुन रहे हैं तो अपना नाम मुझे बता दीजिए। अगर आप मुझे अपना नाम अभी के अभी लिख के व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो मैं आपका अभी के अभी नाम जो है वो रेडियो पे बोल दूंगी। पहले मैं मेरा व्हाट्सएप का नंबर बता रही हूँ, वैसे तो सबको पता ही है, जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ। 3311063 एक बार और 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजिए। चलिए अब मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। मोहम्मद आमिर, दिलदार, राजा उस्मान अली, तो ओके अहमद, साधु, पुनीत, तुकाराम, जाकिर, इब्रार, अनिसुर रहमान, शेख जुनैद, पाली, आदिल, संदेश, यम थापा, ग्लेन, साजिद, रामनाथन, मोहम्मद, सूरज, उस्मान अली, इब्रार अली, वरिंदर, उमर, दीदार जी थैंक यू सो मच, अब्दुल्ला जी थैंक यू सो मच, राजा शाह जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, इरेन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अब्दुल्ला जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अशरा जी थैंक यू सो मच, फहीम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, आई लव रेडियो ऑलिव थैंक यू सो मच। दोस्त पहले नाम अब्दुल साजिद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, राहुल जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। देखिए कुछ भी मत लिखिए दोस्तों, सफदर जी अपना नाम लिखते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ओके फिर भी आपका नाम ले दिया मैंने। मिनहास जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया बेटा अब आप थैंक यू लिख सकते हो और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलना।

0: रेडियो ऑन योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Supported by Homes R Us. We complete

गुजरात और चेन्नई का मैच दोस्त चल रहा है। गुजरात ने पहले खेलते हुए 230 रन का टारगेट दिया है, चेन्नई अभी खेल रही है। 11.1 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 129 और 6 विकेट ऑलरेडी अभी तक जा चुके हैं। तो टेक्निकली उनको 53 बॉल्स पे 101 रन जो है वो बनाने, मेरी आंखों के सामने देखते देखते जो है वो चौका लग गया है। ओके एंड थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए जो कि आप मुझे भेज रहे हैं। मैच अपडेट मैं इसलिए देती हूं ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिए और मैच की टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको अपने आप बताती रहूंगी। क्योंकि अगर आपके फोन में हमारी एप्लीकेशन है ना, तो आपको बस एप्लीकेशन ऑन करनी है और म्यूजिक ऑन हो जाएगा और सिमरन का शो भी।

0: वीकेंड हो और ये वाला गाना ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता यार। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास। आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप जो है वो सुन रहे हैं। 133 का स्कोर हो गया चेन्नई का 6 विकेट के नुकसान पर।
1: T20 स्कोर अपडेट presented by
2: Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global ke site Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
3: Cool song.
2: Radio Olive par. Aane wala gaana, cool song of the hour.
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
3: Cool song.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio
1: Olive. I'm a number one. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: लाइफ में आपकी एबिलिटी टू गेट सम क्लैरिटी ताकि आपको मिले गारंटी फॉर फ्यूचर की सिक्योरिटी विद बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी एंड जियो बिंदास विद ऑडेसिटी और अगर ये ना हो आपकी रियलिटी तो डार्लिंग फिलहाल के लिए हैव सम टी
2: रेडियो ऑलिव विशेस यू हैप्पी इंटरनेशनल टी डे
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के
0: साथ Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Supported by Homes Are Us. We complete

मैं कहती थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए. भाई मैं बड़ी रीले देखने लगी है, मुझे लग रहा है ऐसे जब भी मैं आपको बोलती हूँ थैंक यू सो मच तो मेरा फील पता कैसा होता है, थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह, सेम टू सेम ऐश्वर्या राय. ओ माय गॉड, ये रील्स ना आपका बड़ा दिमाग खराब कर देती है यार. कल पता क्या हुआ, कुछ तो नंबर मांगने की बात हुई ऑफिस में कि नंबर दे दो. मैंने बोला देखो तुम लंबर मांगोगे लंबर में दूंगी नहीं. तो मतलब रील्स देख देख के आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल वैसे ही चलने लगा है. और ऑफिस में क्या होता है कि जब आप साथ रहते हो है ना, एक दूसरे के साथ इतना सारा इंटरेक्शन करते हो तो आप एक दूसरे के साथ रील्स भी शेयर कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि हमारी फीड ना सबकी एक जैसी हो रखी है इंस्टाग्राम की. सो मतलब हम अगर एक दूसरे को रील भेज रहे हैं तो हमने ऑलरेडी वो रील देखी हुई है. अगर उस रील में कोई क्वेश्चन या कोई जोक छिपा हुआ है तो हम भाग के जाके सामने वाले को बोलने जाते हैं और सामने वाले को ऑलरेडी पता होता है. हमारे ऑफिस में इनफैक्ट ये सारी चीजें जो है वो हमारी फीड भी सेम हो चुकी है और रीलें देख देख के अलग लेवल का सीन जो है वो चल रहा है. Yes, रील्स एक दूसरे को भेजते रहना है ना, ये एक ऐसा कनेक्शन है कि आपको बस हाल भी पूछने की जरूरत नहीं है. आपको पता अच्छा मेरी रील देख रहा लाइक हो रही है, खत्म बात. आज रील नहीं आई तो क्यों नहीं आई, मूड खराब है क्या. सो या ये भी अलग लेवल का एक कनेक्शन है टू नो कि ठीक है ना सब लाइफ में. सिमरन कौर आपके साथ जी अविंदाज. तो है कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन जिसके लिए आप सुबह चालू हो जाते हो रील्स भेजना और रात तक जब भी आपका मन है आप टाइम नहीं देखते हो. मैं रात के 3 बजे भी भेज देती हूँ मेरे दोस्तों को रील क्योंकि मुझे पता है वो जज नहीं करेंगे यार. जी अविंदाज.

0: जी हो गए ऑलमोस्ट 4 घंटे पूरे हो गए एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट ऑन रहेगा मेरे जाने के बाद भी बेबी. लेकिन कल का ब्रेक लगेगा क्योंकि कल फ्राइडे है, अपना भी वीकेंड है, आपका भी वीकेंड है. अगर आपका सैटरडे भी वीकेंड है तो क्या बात है यार, थोड़ा सा जलस हूँ और कुछ नहीं है यार. बट अपना ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, पानी का भी ध्यान रखिएगा, एंड गर्मी यस ऑफकोर्स है, सो मेक श्योर की आप अपने आप को हाइड्रेट करके रखिएगा. जो करना करिए वीकेंड में, जो आपका मन है, किसी से मिलने का मन है मिलिए, नहीं मन है नहीं करिए. और अगर ना बोल दिए किसी प्लान के लिए तो रिग्रेट मत करिए. आपने अपने लिए, अगर आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था तो आपने मना कर दिया, आपको अंदर से अच्छा लग रहा था तो आपने हाँ कर दिया, तो कोई रिग्रेट नहीं करना लाइफ में. ओके, सो बाकी की बातें हम सैटरडे शाम को 5 बजे फिर से जबरदस्त इवनिंग्स में करेंगे. खाने में दरो ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना. बी नाइस टू एवरीवन यार. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो.
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Ye gana.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे

Spain. Club Olive. Club on radio. 6.3 FM.

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ओलिव 106.3 FM यू आर लिसनिंग टू क्लब ओलिव.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: रेडियो ऑलिव 106.3 FM यू आर लिसनिंग टू क्लब

this. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

0: Eddie Olive, 106.3 FM. You're listening to Club Olive.
1: संदीप सिंह जी, हमारे हॉकी इंडिया के सितारे और शहबाद दे प्यारे गांव में एंट्री ले चुके हैं। आइए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।